एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन, तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के ठीक 6 बजे हैं।

0: प्रस्तुत है आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

समवेत स्वर में अभी आपने सुना जगदीश बैरागी का लिखा देशगान। अब सुनिए ये भक्ति रचना, गायक स्वर ओम व्यास का है।

अभी आप सुन रहे थे आस्था के स्वर कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब सुनिए चिंतन, आलेख और वाचन जी के शक्तिराज का।

0: जैसे कि अब देखा जाए, हम आज अपनी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं भोजन के द्वारा, वी आर चार्जिंग अवर बॉडी। हम अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं चार्जर के द्वारा, हम गाड़ी को भी चार्ज कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के द्वारा, पर हम अपने माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम है, आज यूथ के सामने भी प्रॉब्लम है, आज हर एक वर्ग के व्यक्ति के सामने प्रॉब्लम है। वो भोजन कर रहा है, बॉडी को चार्ज कर रहा है, पर अपने माइंड को चार्ज नहीं कर रहा है। कहता है माइंड को चार्ज करना है तो सोएंगे तो माइंड चार्ज हो जाएगा। जब हम सोते हैं और जब हम सपने देखते हैं तो माइंड चार्ज नहीं हो रहा है, माइंड और डिस्चार्ज हो रहा है। तो माइंड को चार्ज करने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। आज जैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया एम के ऊपर डिपेंड है, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेडिकल, मार्केट, मोबाइल, मीडिया, ऐसे एम के ऊपर डिपेंड है। पर दुनिया के तमाम एम एक और एम के ऊपर डिपेंड है जिसको कहते हैं माइंड। और माइंड को रिचार्ज करने के लिए मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, उसके बगैर हम नहीं कर पाएंगे। तो मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है, कहा जाता है ऑल अटेंशन बट टू टेंशन, इट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो शब्द लिया है वो एक मैड्री शब्द से लिया है। मैड्री का होता है टू हील, मतलब हम अपने अपने अंदर के संस्कारों को हील करते हैं, अपनी मेंटल बैटरी को चार्ज करते हैं, अपने अंदर का अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सिर्फ बॉडी लेवल में नहीं संस्कारों लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इससे अनेकों लाभ हैं। तो मेडिटेशन बहुत पावरफुल टेक्निक है। जैसे कि मोबाइल को चार्ज किया जाता है, इसी प्रकार माइंड को चार्ज करने की तकनीक है। जैसे कि एक छोटी सी कहानी से मैं स्पष्ट करूंगा। एक बार क्या होता है, एक लकड़हारा रहता है और एक बिजनेसमैन रहता है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है लकड़ियाँ काटनी। लकड़हारा पहले दिन मेहनत करता है, एक घंटे 50 लकड़ी काटता है। दूसरे दिन मेहनत करता है, 10 घंटे 10 लकड़ी काटता है। तीसरे दिन मेहनत करता है, कम से कम 20 घंटे मेहनत करने के बावजूद भी वो 5 लकड़ी काट पाता। और चौथे दिन दिन भर मेहनत करता है, एक भी लकड़ी नहीं काट पाता। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? इनपुट ज़्यादा हो रहा, आउटपुट ज़्यादा आना चाहिए, पर आउटपुट नहीं आ पा रहा। कारण क्या है?
1: थकावट उसकी।
0: थकावट एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम क्या हुई कि जब उसने पहले दिन लकड़ी काटी तो कुल्हाड़ी की धार कैसी थी? बहुत तेज थी, शार्प थी। तो उन्होंने फटाफट लकड़ी काट पाया। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं जीवन में, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और अपनी समस्या रूपी जो भी पेड़ उससे माथा पच्ची कर रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, पर माइंड की कुल्हाड़ी तेज नहीं कर रहे। लकड़हारा बिजनेसमैन के पास जाता है और कहता है मैंने जितनी मेहनत पहले दिन की थी उससे ज़्यादा 4 times मेहनत मैंने लास्ट दिन में की, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। तो बिजनेसमैन कहता है क्या आपने कुल्हाड़ी की धार को तेज किया? तो लकड़हारा कहता है मेरे पास लकड़ी काटने का टाइम है पर कुल्हाड़ी की धार को तेज करने का टाइम नहीं। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? निश्चित तौर पर मूर्ख कहा जाएगा या अज्ञानी कहा जाएगा। तो मैं लोगों को बताता हूं कि अपने मन रूपी कुल्हाड़ी को मेडिटेशन से तेज कर लीजिए, शार्प कर लीजिए, देन आप जीवन में किसी भी समस्या रूपी पेड़ को काट पाएंगे, किसी भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और किसी भी सर्कमस्टेंस में आपका मन स्थिर रहेगा और आप सक्सेस को पाएंगे और जीवन में नियंत्रित रूप से जी पाएंगे। तो मैं लोगों को यही सलाह दूंगा कि मेडिटेशन करें, अपने मन की बैटरी को चार्ज करें। और जो मन की बैटरी को चार्ज, जो बैटरी चार्ज होगी, सपोज आपका मोबाइल डिस्चार्ज 1% बैटरी, तो आप

यू कैन नॉट मेक अ कॉल, आप कॉल भी नहीं कर पाएंगे और आप एंटरटेनमेंट मनोरंजन भी नहीं कर सकते हैं और आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार हमारी मन की बैटरी यदि डिस्चार्ज है तो उसका कारण क्या होगा, इरिटेशन, डिप्रेशन, एंगर और जितने भी विकार हैं वो सारे आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है। जैसे ही मेरी बैटरी चार्ज है तो एंटीवायरस एक्टिवेट हो जाएगा और जो वायरस हैं दुनिया के वो मेरे जीवन में नहीं आएंगे और चारों ओर मैं अपने जीवन में सक्सेस को, सफलता को और खुशियों को अपने जीवन में भर सकता हूँ। तो मेडिटेशन एक एंटीवायरस का काम करता है हमारे जीवन में, चार्जर का काम करता है।

आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और वाचन था जी के शक्तिराज का। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंदमग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर सुरेश वाडकर का। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक श्री सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
2: 870-001-4242।
0: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा, वाचिका निरुपमा मिश्रा।
3: किसान भाई हों राम राम। आज कृषि चर्चा में हम चर्चा करांगा लौकी की उन्नत खेती का बारे में, वाचक स्वर निरुपमा मिश्रा को। किसान भाई हों, लौकी एक कद्दू वर्गीय सब्जी फसल छे। विटामिन सी और जिंक से भरपूर इन्हीं सब्जी से त्वचा का कई लाभ होज। किसान भाई हों, लौकी की फसल साल में 3 बार लई कर मुनाफो कमायो जा सकज। किसान भाई होन, लौकी की खेती का लेन गर्म और नम जलवायु उपयुक्त रज। लौकी का पौधा ज्यादा ठंड सहन नहीं कर सकता। लगभग 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पौधा नो को विकास अच्छो होज। किसान भाई होन, लौकी की खेती का लेन बलुई दोमट मिट्टी जो कि जीवांश युक्त होए सबसे अच्छी रज। मिट्टी को पीएच मान 6 से 7 का बीच होना चाहिए। जल जमाव वाली और पथरीली भूमि लौकी की खेती का लेन उपयुक्त नहीं रहती। किसान भाई हों, लौकी की खेती का लेन खेत की तैयारी की बात करा तो एका लेन खेत का 2 से 3 बार जुताई करा। जुताई का बाद खेत में पाटो लगाई कर खेत की मिट्टी का समतल अरु भुरभुरी बनाई लेवा। खेत तैयार करते समय प्रति एकड़ खेत में बेसल डोज का रूप में 70 किलोग्राम NPK, 10:26:26 खाद का साथ 25 किलोग्राम यूरिया, 12 किलोग्राम सल्फर और 4 किलोग्राम देहात स्टार्टर को उपयोग करा और खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करा। किसान भाई हों, लौकी की किस्म को चयन अपना क्षेत्र का अनुसार करा। लौकी की अच्छी उपज प्राप्त करने का लेन देहात DHS 2200, देहात DHS 2202 और देहात DHS 2210 किस्मों को चयन करा। इनका अलावा हाइब्रिड F1 लौकी, सरपन F1 हाइब्रिड लौकी 55, आयरिस राउंड मुमताज F1 लौकी और जेटेक्स शुभांगी को भी चयन कर सकूज। किसान भाइयों, खरीफ लौकी फसल की बुआई जून से जुलाई महीना में की जाए। जेका लेन बीज की मात्रा किस्म का अनुसार कम या ज्यादा हुई सकज। सामान्य तौर पर प्रति एकड़ खेत का लेन 300 से 350 ग्राम बीज की आवश्यकता रज। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज का 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम 12% का साथ मेंकोजेब 63% WPC उपचारित करना चाहिए। किसान भाइयों, लौकी की खेती से अच्छी उपज प्राप्त करने का लेन एक ही बुआई कतार में करनी चाहिए। जे काम कतार से कतार की दूरी 6 फीट और पौध से पौध की दूरी 2.5 फीट रखनी चाहिए और बीज को 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोनू चाहिए। किसान भाइयों, अन्य सब्जी वाली फसल की तुलना में लौकी की फसल में यूरिया की आवश्यकता ज्यादा रहज। बुआई का 10 से 15 दिन बाद प्रति लीटर पानी में 2 मिलीलीटर देहात अकिलिस GA को प्रयोग करना चाहिए। एकासी पौधा न मादा फूल की संख्या बढ़ने में सहायता मिलज। पौधा न फूल आवना का समय 5 ग्राम MKP 1 ग्राम चिलेटेड बोरान को छिड़काव करा। फसल विकास का समय प्रति लीटर पानी में 2 मिलीलीटर बूस्ट मास्टर को छिड़काव अच्छो रज। न साथज लौकी का फल की गुणवत्ता बढ़ावना का लेन प्रति लीटर पानी में 1 ग्राम चिलेटेड कैल्शियम का साथ 1 ग्राम बोरान को 20% छिड़काव करा। किसान भाइयों, जहां तक इन फसल में सिंचाई की बात छे तो खरीफ की लौकी में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी मिट्टी में नमी का अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। समय समय पर इन्हीं सब्जी फसल में खरपतवार और कीट रोग प्रबंधन भी जरूरी छे क्योंकि इनका कारण लौकी उत्पादन प्रभावित हुई सकज। किसान भाइयों, लौकी का फल तैयार होने की अवधि ओकी किस्म और मौसम पर निर्भर करज। लौकी की बुआई का 50 से 65 दिन बाद फल की पहली तुड़ाई की जाए।

0: सकज। तो किसान भाई होन आज की कृषि चर्चा में बस इतरोज, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, वाचिका निरूपमा मिश्रा, ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है।
2: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
3: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
2: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
3: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
4: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
5: इछे निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। कार्यक्रम विवरणा।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 7 बजे प्रसारित करेंगे वार्ता प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। वार्ताकार अब्बास अली निमाड़वाला।

7:20 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम चेतना में आप सुनेंगे डॉक्टर शिवानी सिंह कुशवाहा से विद्याधर मुले की बातचीत। विषय है महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं और फिजियोथेरेपी। सुनहरा पल कार्यक्रम 7:30 पर, 8:15 पर निमाड़ी लोक संगीत। आपके मीत ये गीत फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे 10 बजे। ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम कोपल प्रसारित करेंगे 10:05 पर। इसमें आज सुनिएगा वार्ता योग का महत्व, वार्ताकार वागीशा सोनी। 10:40 पर सुनिएगा सुगम संगीत।

श्रोताओं, दिन में 3:55 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी किए जाने वाले कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। आज संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति पराग गोखले की।

संध्या 6 बजे युववाणी कार्यक्रम में आकर्षण होगा, क्रम साप्ताहिक विज्ञान एवं खेल गतिविधियां। फिल्म संगीत 6:30 पर। 7:21 पर किसान वाणी कार्यक्रम में खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन विषय पर जानकारी देंगे धर्मेंद्र माहौर।

रात्रि 8 बजे हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर NSD आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे स्पॉटलाइट। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, अब से कुछ ही देर बाद प्रातः 7 बजे प्रसारित करेंगे वार्ता प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। वार्ताकार अब्बास अली निमाड़वाला। 7:20 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम चेतना में आप सुनेंगे डॉक्टर शिवानी सिंह कुशवाहा से विद्याधर मुले की बातचीत। विषय है महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं और फिजियोथेरेपी। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आज की ताजा खबर।
2: आज की ताजा खबर में प्रस्तुत है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कल खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अंतर्गत आयोजित विश्व सिकल सेल दिवस 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आज सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खंडवा के आधार केंद्र डाकघरों में आधार नामांकन एवं अपडेट हेतु विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत नागरिक अपने आधार कार्ड में आवश्यक संशोधन जैसे नाम पता जन्म तिथि मोबाइल नंबर बायोमेट्रिक अपडेट आदि आसानी से करवा सकते हैं। आज कृषि महाविद्यालय खंडवा में प्राकृतिक खेती संबंधी कार्यशाला आयोजित की जाएगी। दिन में 11 बजे आयोजित होने वाली इस कार्यशाला के अंतर्गत जीवामृत धन जीवामृत और बीजामृत बनाने की विधि समझाई जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का वितरण आज किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से वर्चुअली संबोधित कर पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम को पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पुरानी मंडी में प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम। इस सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के जनजाति विभाग के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह शामिल होंगे। और अब खबर खेल जगत से। ऑकलैंड में चल रहे नेशंस कप में 3 मैचों में जीत के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम प्रो लीग का आज मुकाबला चिली से होगा। तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज भारत का मुकाबला

0: अफगानिस्तान से एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में होगा। 3 मैचों की इस श्रृंखला में भारत पहले ही 2-0 की अपराजय बढ़त बना चुका है। और अब एक नजर तापमान पर। कल दिन का अधिकतम तापमान रहा 39.5 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस। ये थी आज की ताजा खबरें, संकलन फातिमा लोखंडवाला का।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है वार्ता प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। वार्ताकार अब्बास अली निमाड़वाला।
2: संसाधन वे होते हैं जो उपयोगी या फिर मनुष्य को अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए उपयोगी बनाए जा सकते हों। ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जिनमें वायु, पानी जो वर्षा, झीलों, नदियों और कुओं द्वारा, मृदा, भूमि, वन, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्मीय ईंधन इत्यादि शामिल है। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन हमें पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। जब मानव जनसंख्या कम थी और वे नियंत्रित एवं संयमित जीवन व्यतीत करते थे, तब संसाधनों का प्रयोग सीमित था। लेकिन बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक प्रक्रियाओं के चलते अत्यधिक मात्रा में पदार्थों का उपयोग करने के कारण प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर भारी बोझ पड़ता है और इस कारण पर्यावरण गंभीर रूप से नष्ट होता जा रहा है। मानव जनसंख्या में होती अत्यधिक वृद्धि के कारण वनोन्मूलन, आर्द्र भूमि का बह जाना और तटीय क्षेत्रों का सुधार करके अपने घर एवं फैक्ट्रियों को बनाने को बढ़ावा मिला, बहुत बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग उद्योगों एवं परिवहन के लिए किया जाता है। वनों का उन्मूलन जैव विविधता की हानि का कारण है, जिसमें भावी पीढ़ियों को जैव विविधता रूपी खजाने से वंचित होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए अत्यधिक आवश्यक है कि आगे प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्नीकरण को रोका जा सके और उनका उपयोग एक न्याय एवं तर्कसंगत ढंग सततीय रूप से करने के लिए आश्वस्त किया जाए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग न्यायोचित ढंग से किया जाए ऐसा ही शामिल है, इसलिए उनको व्यर्थ रूप में उपयोग नहीं, अपक्षय या अवक्रमित नहीं कर सकते हैं और ये संसाधन वर्तमान एवं भावी दोनों ही पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। जीवाश्मी ईंधन, जिसमें सभी प्रकार की संचित सौर ऊर्जा जैसे कोयला, लिग्नाइट, पीट, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस शामिल होते हैं, ये सभी ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। ये ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय एवं समाप्तशील हैं, क्योंकि वे एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं और हमारे जीवन काल में इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। उनके नवीनीकरण या पुनः निर्माण के लिए लाखों वर्ष लगते हैं। यद्यपि कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस उद्भव में जैविक है, जैसे कि वे पौधों और प्लवकों द्वारा निर्मित किए गए हैं जो लाखों वर्ष पूर्व पाए जाते थे, व्यवहारिक रूप से वे नवीनीकृत नहीं हो सकते हैं। कम से कम हमारे समय में तो ये दोबारा नहीं बन सकते हैं। एक बार इन संसाधनों का उपयोग कर लिया जाता है तो व्यवहारिक रूप से वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। विश्व स्तर पर तेल का उपभोग तेजी से बढ़ गया है, लेकिन अनवीकरणीय स्रोतों की तरह तेल की आपूर्ति का होना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वर्तमान दर से तेल का उपयोग करने के कारण इनकी संपूर्ण मात्रा इसी सदी के दौरान समाप्त हो जाएगी। यही बड़ी मुश्किल से विश्वास करने वाली बात है कि हम तेल की इतनी मात्रा का प्रयोग करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास 3 विकल्प हैं। पहला, अधिक तेल की खोज। दूसरा, तेल के उपयोग को बेकार या कम करना। तीसरा, तेल के स्थान पर अन्य विकल्पों का उपयोग करना। जब तेल की आपूर्ति कम होती है तो भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए नए रिजर्वों को खोजने के लिए प्रेरित करती है, अथवा नई तकनीकों द्वारा अधिक मात्रा में तेल निकालने को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्राकृतिक गैस कोयले, तेल के समान ही जीवाश्म के अवशेषों से निर्मित होती है। प्राकृतिक गैस के निर्माण के लिए भी वही स्थितियां आवश्यक होती हैं जो कि तेल निर्माण में होती हैं। प्राकृतिक गैस व्यावसायिक ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रही है। ये पेट्रोलियम के साथ साथ पाई जाती है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार एवं पुनः प्राप्ति स्थल पाए जाते हैं। भारत के पास औद्योगिक रूप से खनिजों के महत्वपूर्ण एवं अपार भंडार है। खनिज जैसे जल एवं भूमि पृथ्वी के अतुलनीय खजाने हैं। खनिज किसी देश के औद्योगिकरण तथा आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तेल और पेट्रोलियम की तरह ही खनिज भी अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए इसका प्रयोग भी ध्यानपूर्वक एवं विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए ताकि इन खनिजों को भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सके। भारत के पास विश्व के कुल आयरन अयस्क का 20% भंडार है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का

विश्व में तीसरा स्थान है। प्लास्टिक और कांच जैसे बहुतायत से पाए जाने वाले विकल्प खनिजों की कमी के लिए एक कारगर तरीका है, जिसमें खनिजों का अवक्षय रोका जा सकता है। लेड और स्टील का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन में पहले से कम किया जा रहा है, उनकी जगह प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन की केबल में तांबों के तारों की जगह ग्लास फाइबर का उपयोग शुरू कर दिया गया है। अभ्रक के संश्लेषित विकल्प ने इसके आयात और उत्पादन दोनों को कम कर दिया है। खनन तकनीकों में सुधार करने का एक तरीका अयस्क धातु से निष्कर्षण के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करना है, जो कि धातुओं के खनन के लिए पर्यावरण के लिए उत्तम तरीका है। पर्यावरण में विश्व भर में कुल तांबा उत्पादक का 30% जैव खनन तरीके से ही प्राप्त होता है। जैव खनन

ने इसके आयात और उत्पादन दोनों को कम कर दिया है। खनन तकनीकों में सुधार करने का एक तरीका अयस्क धातु से निष्कर्षण के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करना है, जो कि धातुओं के खनन के लिए पर्यावरण के लिए उत्तम तरीका है। पर्यावरण में विश्व भर में कुल तांबा उत्पादक का 30% जैव खनन तरीके से ही प्राप्त होता है। जैव खनन कम गुणवत्ता वाले अयस्कों के लिए विशेषकर काफी मितव्ययी है। नैनो टेक्नोलॉजी के विज्ञान ने परमाणु और अपरिमित सामर्थ्य के प्रयोग में प्रत्येक चीज, दवाइयों से लेकर सोलर सेल से लेकर ऑटोमोबाइल के ढांचों का उत्पादन और निर्माण कार्य होता है। इस प्रकार बहुत से खनिजों का स्थान नैनो टेक्नोलॉजी से निर्मित हुए पदार्थ ने ले लिया है। सौर, वायु और ज्वारीय ऊर्जा वास्तव में मानव के जीवन काल में कभी समाप्त न होने वाले संसाधन है। ऊष्मा और प्रकाश के रूप में प्रतिदिन पृथ्वी पर भेजी जाती है, चाहे हम उसका प्रयोग करें या न करें। सौर ऊर्जा को नियंत्रित तरीके से अंतरिक्ष और पानी गर्म करने के लिए कर सकते हैं, या फिर भाप उत्पन्न करके इनको बिजली के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सूर्य द्वारा पृथ्वी को ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक गर्म करता है, और पृथ्वी के घूमने के कारण हवा बहती रहती है, जिसे पवन कहते हैं। इस प्रकार वायु में अपरोक्ष रूप से सौर ऊर्जा का ही एक रूप है, और पवन चक्कियों की सहायता से इसे प्रयोग करके बिजली बनाई जा सकती है। भारत के तटवर्तीय क्षेत्र विशेषकर पवन ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त खोज है। भारत में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। भूमि एक बहुमूल्य संसाधन है जिसे मानव कृषि, खनन आदि के लिए प्रयोग करता है। भूमि के उपयोग के फलस्वरूप पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य बदल गए हैं। मानव भूमि का विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, घर निर्माण, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग करता है। मृदा निर्माण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन मृदा की एक इंच परत बनने में सामान्य रूप से 200 से 1000 साल का समय लगता है, और मृदा अपरदन मृदा की परत बनाने की दर की तुलना में काफी तेजी से होता है। इसलिए भूमि की सुरक्षा वनस्पति उगाकर की जा सकती है और उसे मृदा अपरदन से बचा सकते हैं। जल एक बहुमूल्य संसाधन है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। हम अपनी उत्तरजीविका के लिए अक्सर अलवणीय जल संसाधनों पर निर्भर करते हैं जो निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। हम अलवणीय जल को पीने, फसलों की सिंचाई और औद्योगिक उपयोग, परिवहन, मनोरंजन तथा अपशिष्टों के बहाने के लिए उपयोग में लाते हैं। पानी की उपलब्धता आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय सततता का एक शक्तिशाली सूचक है। अलवणीय जल संसाधनों को तेजी से समाप्त होने से रोकना चाहिए, एवं जल की उपलब्धता को भी कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। जल को बेकार खर्च करने से रोकना, जल का कारगरता से उपयोग करने को बढ़ावा देना, जल का पुनः चक्रण, बाढ़ के पानी को अधिक से अधिक रोकना एवं एकत्रित करना, वर्षा जल को एकत्रित करना। जैव विविधता एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है। जैव विविधता मानव के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वे जीवों के संसार में बहुत से परोक्ष एवं अपरोक्ष लाभ उठाते हैं। ये खाद्य फसलों, मवेशियों, वन और मत्स्यिकी के स्रोत हैं। जैव विविधता या जैव विविधता में अनुवांशिक विविधता, स्पीशीज विविधता तथा पारिस्थितिकी विविधता सम्मिलित की गई है। ये तीनों स्तरों की जैव विविधता अंतर्निहित होती है। आधुनिक कृषि को जैव विविधता को तीन तरीकों से अच्छी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। नई फसलों के स्रोत के रूप में, बेहतर नस्लों के जनन के लिए पदार्थ स्रोत के रूप में, नए जैव निम्नीकृत कीटनाशकों के स्रोतों के रूप में। बढ़ती हुई जनसंख्या का विपरीत प्रभाव समृद्धि एवं अनन्य पर्यावरण और उसकी जैव विविधता पर पड़ता है। पारितंत्रों, वन, घास के मैदान, समुद्र का अत्यधिक दोहन पर्यावरण का विनाश और प्रदूषण जैव विविधता की हानि के मुख्य कारण हैं। पौधे एवं प्राणियों को अधिकता से नष्ट करने के कारण उनके विलोपन का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार से नवीनकरणीय संसाधन भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सजीव संसाधनों के अतिदोहन को नियंत्रित एवं रोकना चाहिए। संरक्षण और स्वस्थ जैव विविधता को संरक्षित एवं नियमित करना चाहिए, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को उनका पूरा लाभ मिल पाए। कुछ भी उपयोगी या फिर मानव की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी बनाना संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन सतत चलता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला प्रमुख अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन हैं, जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका उपयोग काफी तेजी से किया जा रहा है। नए ऊर्जा स्रोतों की खोज करनी चाहिए, ताकि जीवाश्म ईंधन को भविष्य के लिए संरक्षित कर सकते हैं। खनिज एक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन है, और हमारी औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोहा, मैग्नीज और क्रोमाइट लोहयुक्त धात्विक खनिज है। भारत के बहुत से राज्यों में इनके बड़े भंडार हैं। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, लैंड, जिंक आदि अलौहयुक्त धात्विक खनिज हैं। भारत में बहुत सारे अधात्विक खनिज जैसे चूना, पत्थर,

0: डोलोमाइट, माइका के विशाल भंडार पाए जाते हैं। समुद्र तल खनिज संसाधनों से भरी पड़ी है। समुद्री तली पर सोना, चांदी, तांबा, जिंक पाए जाते हैं, परंतु इसका निष्कर्षण काफी महंगा होता है। विद्यमान आपूर्ति का पुनर्चक्रण, अपशिष्ट रहित अनुपयोगी विकल्प को खोजना या है बिना विकल्प के कार्य करना है।
1: प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये वार्ता अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार अब्बास अली निमाड़वाला। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा बंगाल दौरे पर, रायरंगपुर में 47,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, बंगाल में किसानों को सम्मान निधि की मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के तहत बांटी 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इंदौर के सावेर में देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। और प्रदेश में मानसून 8 से 10 दिन लेट, आज भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे और दोनों संथाली जहरा तथा हो जहरा के पावन स्थलों पर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में 47,000 करोड़ रुपये के से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे में प्रधानमंत्री आज हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9,44,00,000 किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70,00,000 जॉब सृजित हुई है। करीब 20,00,000 युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज इंदौर जिले के सावेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान करेंगे। इसके तहत 38,000 से अधिक परिवारों को नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश कराया जाएगा। इस दौरान वे 2,935 करोड़ रुपए की लागत वाली करीब 48 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं कल केंद्रीय मंत्री ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के साथ ऊर्जा और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक भी की।

0: भोपाल में एमपीआईडीसी मुख्यालय में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के उप महानिदेशक सुशील कुमार सतपुते ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थान साझा मंच पर आकर नवाचार आधारित रक्षा विनिर्माण को आगे बढ़ाएंगे। कार्यशाला में देशभर के 40 से अधिक प्रमुख उद्योगों और शोध संस्थानों ने भाग लिया। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुँचने की अपील की गई है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार।
0: राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदेश पुलिस को विदेश मंत्रालय द्वारा 5 लाख से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 3,35,000 से अधिक पासपोर्ट सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरे किए गए। प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भोपाल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर अब ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही यहां स्टार्टअप्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होगी। इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित बहुआयामी शहरी केंद्र के रूप में विकसित करना है, ताकि वे व्यापार, पर्यटन और रोजगार सृजन के प्रमुख केंद्र बन सकें। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। पुस्तक पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और डॉक्टर श्रीकांत पांडे भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देशभर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से

25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्यतः मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारतीय टीम पहले ही 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में तुलसीनगर पुलिया से निपानिया तक सड़क और सीवर लाइन निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शुभारंभ किया। खंडवा के कृषि महाविद्यालय में आज किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से परिचित कराने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आगरमालवा के ग्राम गाता में 750 बीघा शासकीय गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सीमांकन किया गया। राजगढ़ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। बैतूल में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवणे और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने नीट परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। और इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में रेशम समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए नवीन कृषकों का ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: 101.2 MHz पर ये है FM खंडवा।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
1: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
0: ये आकाशवाणी खंडवा है। स्वास्थ्य कार्यक्रम चेतना के अंतर्गत आज सुनिए डॉक्टर शिवानी सिंह कुशवाहा से विद्याधर मुले की बातचीत। विषय है महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं और फिजियोथेरेपी।
3: कार्यक्रम चेतना के श्रोताओं को नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं और फिजियोथेरेपी, इस विषय पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर शिवानी सिंह कुशवाहा हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: फिजियोथेरेपी कितनी उपयोगी है, क्यों ज़रूरी है?
4: महिलाओं के लिए फिजियोथेरेपी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि महिलाएं सारे घर का कामकाज करती है।
3: जी।
4: कई महिलाएं कामकाजी रहती है, कई घर पे काम करती है।
3: जी।
4: तो उसके लिए जो उनके बायोमैकेनिकल एरर्स होते हैं, यानी कि शरीर में की व्यूह रचना में जो भी, कभी कमर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये इसलिए होता है क्योंकि वो अपना पोस्चर सही नहीं रख पाती।
3: ओके।
4: तो उस पोस्चर को हम करेक्ट करते हैं और साथ में गलत पोस्चर की वजह से बहुत सारी मसल्स, मांसपेशियां हमारे शरीर में होती है जो कि कमजोर हो जाती है।
3: अगर इसको मैं थोड़ा सा सरल करने की कोशिश करूं कि पोस्चर का मतलब जिस तरह से वो बैठी हैं या जिस तरह झुक के काम कर रही हैं या फिर उनकी मुद्रा जैसी है, उसके कारण मांसपेशियों की वैसी आदत हो जाती है या उनकी क्षमता कम हो जाती है, ऐसा कुछ है?
4: दोनों होता है। झुक के वजन उठा रहे हैं।
3: हाँ।
4: अब उस वजन उठाने में जो मांसपेशियां जिस तरह से काम करनी चाहिए थी, लेकिन जल्दी जल्दी में हमने वजन उठा लिया और वो मांसपेशियां जो है वो गलत तरीके से काम करने लग गई उस वक्त। तो
3: अच्छा।
4: उसको ठीक करने के लिए, और साथ ही जब मांसपेशी गलत डायरेक्शन में जाएंगी तो उससे दर्द हो देगी।
3: Okay.
4: सूजन आ जाएगी उसमें। तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम क्या करेंगे, उन मांसपेशियों को वापस से स्ट्रेंथन करेंगे, यानी कि उनमें ताकत लाएंगे और उनको उनके नॉर्मल पोजीशन में वापस लाएंगे ताकि उनका दर्द ठीक हो जाए और पोस्चर ठीक हो जाए।
3: एक क्रिकेटर को देखा है, क्रिकेटर है, व्यस्त क्रिकेटर है, अपने स्टेट के लिए खेलता है, लेकिन जब वो चलता है तो उसके कंधे झुके हुए रहते हैं। कोई फिजियोथेरेपिस्ट बोलेगा कि इसका पोस्चर गड़बड़ है, पर वो इतना बिजी क्रिकेटर है, वो स्वास्थ्य से उस जुड़ी कोई समस्या नहीं है
4: जी। वो किसी किसी का पोस्चर ही इस तरह से डेवलप

0: हो जाता है कि वो उस पोजीशन में बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं, वो एक्चुअल में गलत रहता है
1: जी,
0: तो उसको भी हम फिजियोथेरेपी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं।
1: अच्छा, बहुत सारी महिलाओं का देखा है कि वो बैठती हैं तो बिल्कुल एक धनुष के आकार की कमान बन जाती
0: जी,
1: है
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: वर्षों से बना हुआ ये तो शरीर का आकार बन गया है, इसे कितने समय में ठीक किया जाता है?
0: समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है
1: जी,
0: क्योंकि जो लेवल तक मसल्स हमारी पीड़ित हो चुकी होती है तो उसमें समय लगता है, लेकिन फिजियोथेरेपी से ये हो जरूर जाता है।
1: अच्छा।
0: उसमें हम दो तरह की ट्रीटमेंट देते हैं, एक होती है इलेक्ट्रिकल थेरेपी, यानी कि मशीनों के माध्यम से हम दर्द को और सूजन को कम करते हैं।
1: अच्छा।
0: और दूसरा रहता है फिजिकल थेरेपी, जिसमें कि एक्सरसाइजेस कसरत के माध्यम से हम शरीर का जो बायोमैकेनिकल एरर है या फिर जो भी पोस्चर में गलत है उसको सुधारते हैं।
1: महिलाओं में एक खास समस्या होती है लोअर बैक पेन की।
0: जी,
1: हर दूसरी तीसरी महिला कहती है कि कोई तकलीफ हो ना हो कमर बहुत दुखती है।
0: जी,
1: तो फिजियोथेरेपी कैसे ठीक करती है?
0: जी, उसका कारण वापस यही है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। जो मांसपेशियों को हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे पहले के समय में नियमित योगा किया जाता था
1: जी,
0: वॉक किया जाता था, पर आजकल जो महिलाएं हैं वो इस तरफ ना ध्यान देते हुए केवल जो घर का काम है उसी को एक्सरसाइज के तौर पर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें जो योगा है या हमारी एक्सरसाइजेस है इससे हम जो स्पेसिफिक मसल्स है मांसपेशियां है उनको ताकत देते हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो महिलाएं कसरत करके सारे काम करती है उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती।
1: आपने
0: है।
1: मेरा एक प्रश्न ही छीन लिया। मैं यही कहने वाला था कि महिलाओं का यह कहना है कि सुबह से लेकर शाम तक हमें फुर्सत ही नहीं होती, हमारा पूरा शरीर दिन भर जुता हुआ रहता है घर के कामों में, इससे बड़ा व्यायाम और क्या हो सकता है? लेकिन आपने कहा कि घर के काम करना व्यायाम नहीं है।
0: जी जी बिल्कुल, घर के काम करना व्यायाम नहीं है क्योंकि उस वक्त हम बहुत सारे मांसपेशियों को एक साथ यूज करते हैं हमारे शरीर के, लेकिन जब हम कसरत करते हैं तो हम जैसे मान लीजिए बैक मसल्स यानी कि हमारी पीठ की जो मांसपेशियां है हम सिर्फ उन्हीं को स्पेसिफिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज यानी कि ताकत की कसरत करते हैं, तो उस वक्त हम उनकी तरफ ही ध्यान देते हैं और बाकी जब हम काम करते हैं तब हमारा ये ध्यान नहीं रहता कि हम किस तरह से झुक रहे हैं, किस तरह से खड़े हो रहे हैं, किस तरह से हाथ चला रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त यानी कि कसरत करते वक्त हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारी जो मांसपेशियां है उसको सही तरह से चलाते हैं।
1: कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप कराएंगे अगर किसी को?
0: जैसे बैक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। कोर में आते हैं हमारी जैसे हमारी पेट की मांसपेशियां। कई बार लोग ये नहीं जानते कि कमर में दर्द है यानी कि कमर की मांसपेशियां कमज़ोर है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार पेट की मांसपेशियां कमज़ोर होने के कारण भी कमर में दर्द आता है।
1: अच्छा, यानी इस ये कमज़ोर है तो उसका पड़ोसी भी तकलीफ में।
0: जी जी जी, कई बार जो हमारे हिप मसल्स ग्लूटियल मसल्स यानी कि हमारे कूल्हे की जो मांसपेशियां रहती है उनमें वीकनेस है, उनमें कुछ तकलीफ है तो भी हमारे बैक में हमें दर्द हो सकता है।
1: जी,
0: तो हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो ये हम सारी मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं यानी कि सारी मांसपेशियां पीठ की कमर की और कूल्हे की पैरों की इन सब मांसपेशियों की एक्सरसाइज करते हैं ताकि जो हमारा बैक पेन है वो ठीक हो।
1: अच्छा, और अगर कोई स्वस्थ महिला है उन्हें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन उसके मन में ये भी है कि मैं ऐसी ही स्वस्थ रहूं जैसी मेरी माँ को ये तकलीफें होती है वो मुझे ना हो
0: जी,
1: तो उसे इस जागरूक लड़की को एक युवती को क्या करना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइजेस आप सजेस्ट करेंगी?
0: सबसे पहले तो जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है एक हेल्दी महिला है
1: जी,
0: उसको एक्सरसाइजेस में वॉक आता है कि आप नॉर्मल ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं
1: जी,
0: अगर आप बिल्कुल स्वस्थ है तो आप ब्रिस्क वॉक कर सकते 10-15 मिनट्स के लिए, 10-15 मिनट के लिए
1: जी।
0: और एक्सरसाइजेस में जो हमारा नॉर्मल योगा रहता है जैसे कि सूर्य नमस्कार
1: जी।
0: बहुत पुराने समय से सूर्य नमस्कार किया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस यानी कि हमारे कमर पीठ की एक्सटेंशन पीछे की तरफ ले जाने वाली सारी मुद्राएं रहती है, तो वो आपकी पूरी बॉडी को बहुत हेल्दी रखती है
1: जी। और वो जो 12 आसन है उसमें एक बार शरीर आगे झुकता है, दूसरी बार पीछे जाता है, और हर बार ये 6 चक्र इसके चलते हैं, दो बार
0: तो जो सूर्य नमस्कार बनाया गया है जो 12 आसन है वो इतने अच्छे है कि अगर आप उसको ही सिर्फ करेंगे दिन में एक बार ही अगर कर ले तो आपकी जितनी भी मसल्स है शरीर में वो सब प्रॉपरली वर्क करेंगे, सब अच्छे से

0: काम करना शुरू करेंगे?
1: ये जो बातचीत है हमारी, बिल्कुल सामान्य जिन्हें फिजियोथेरेपी के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम उन महिलाओं के लिए ये मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, क्या फिजियोथेरेपिस्ट कोई दवाई वगैरह देते हैं या फिर सिर्फ एक्सरसाइज?
0: नहीं, केवल एक्सरसाइजेस,
1: केवल एक्सरसाइज कराते हैं,
0: कोई दवाई नहीं देते
1: जी।
0: वो सिर्फ एक्सरसाइज, जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल थेरेपी जो कि मशीन से किया जाता है और वो भी सिर्फ एक्सटर्नल यूज होता है, हम इनटेक करने के लिए कुछ नहीं देते हैं,
1: कुछ भी
0: सिर्फ स्किन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन होता है वो दिया जाता है। लो फ्रीक्वेंसी करंट रहते हैं, एक करंट रहते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, इसमें अलग अलग मशीन आती है,
1: यानी इतना हल्का रहता है कि शरीर को उससे लाभ मिलता है।
0: जी, लाभ मिलता है और किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती, ना स्किन को, ना मांसपेशियों को, ना हड्डी को।
1: और कोई व्यक्ति बीमार है, बेड रेस्ट है, वो तो कसरत के नाम से तो घबरा जाएगा
0: जी।
1: तो क्या उस समय फिजियोथेरेपी हो सकती है?
0: जी बिल्कुल, उस समय तो फिजियोथेरेपी का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि जब कोई बीमार है या बेड पर है तो उनकी जो मांसपेशियाँ रहती है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है। हमारी मांसपेशियाँ इसलिए मजबूत रहती है क्योंकि हम उसे यूज़ करते हैं, लेकिन जो कसरत नहीं कर पाते या जो बेड पर है उनकी मांसपेशियाँ पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है, तो उस समय फिजियोथेरेपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है उन पेशेंट्स के लिए जो कि बेड पर है या जो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट खुद से नहीं कर पा रहा है तो फिजियोथेरेपिस्ट उनके यहाँ पर जहाँ भी वो है वहाँ जा करके उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि उस समय मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, उससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, रक्त का प्रवाह अच्छा होता है शरीर में
1: जी।
0: और मूवमेंट्स, सारे जॉइंट्स की मूवमेंट होती है।
1: डॉक्टर शिवानी सिंह कुशवाहा, थोड़े से प्रश्न और आपके इतने अच्छे जवाबों के बाद बहुत सारे प्रश्न मन में आ गए हैं, लेकिन वो अगले किसी कार्यक्रम के लिए रख लेते हैं क्योंकि कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो गया है। आप हमारे स्टूडियो में आई, जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: जी बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं और फिजियोथेरेपी, इस विषय पर स्वास्थ्य कार्यक्रम चेतना में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शिवानी सिंह कुशवाहा से विद्याधर मुले की बातचीत। आकाशवाणी खंडवा से प्रसारित होने वाला हमारा अगला कार्यक्रम है सुनहरे पल, बस कुछ ही पलों में।
3: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन,
4: आकाशवाणी खंडवा।

वर्ष 1964 की फिल्म जिंदगी का ये गीत जिंदगी के कितने करीब है, दिल के कितने करीब है। वो कहते हैं कि आओ ना, थामते हैं एक दूजे का हाथ, इस एतबार के साथ कि वफा निभाने में न तुम पीछे हटोगे और न हम। कदम गर हम एक चलें तो तुम भी चलना जरूर, ठहरना नहीं। वो क्या है ना, अगर तुम न चले तो रास्ते चल पड़ेंगे और हम पीछे छूट जाएंगे। तुम पुकारोगे जोर से हमको पर हम सुन न पाएंगे। और जहन में उठे इस अकेलेपन के खामोश शोर में हम तुम्हें ये बता भी ना पाएंगे।

0: हम जानते हैं, तभी तो मनोरंजन का खजाना लेकर आते हैं आपके लिए। सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
1: कुछ इस तरह से आसमान ने हमसे पूछा जैसे हम कोई आजाद परिंदा हों। शायद उसे खुशफहमी है कोई इस बात की कि हम बेबाक आसमान में उड़ते हैं, ख्यालों के, ख्वाबों के, वफाओं के। उसे तो इस बात का एहसास भी नहीं कि अशकों में भीगे ये पल हमको उड़ने नहीं देते। पर ए आसमां, तू ये ना समझ बैठना कि तुझसे नाराज हैं हम।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
2: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
1: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
2: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
3: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
4: ओए होए, ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
5: और आकाशवाणी खंडवा से जारी है आज के सुनहरे पल का ये सुरीला सफर।
6: कभी सुना है आपने गम का साज? ये बहुत खूबसूरत होता है जनाब। इसकी आवाज में वो खनक है जो इबादत में मत्था टिका दे। इसके साज में वो राज है जो मगरूर को इंसान बना दे। और इसकी मोहब्बत में वो असर है जो खुदा का वास्ता दे, खुदा से भी मिला दे।

जी हाँ, वफा की उम्मीद करने वाले तो चाहे कितने ही सितम क्यों ना हो, यही कहते हैं। उन्हें फिक्र है हर दम नई तर्ज़े जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। जी हाँ दोस्तों, वफा और बेवफाई के इस दौर में ये सिलसिले तो बस यूं ही चलते रहे।

अब समय है आपसे विदा लेने का दोस्तों, लेकिन हमारा तो ये वादा है कि हम आपसे कभी जुदा नहीं होंगे। हम और आप हमेशा साथ होंगे, यूं ही मिलते रहेंगे सुनहरे पल के इस सदाबहार सफर में, और सुनते रहेंगे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके अपने रेडियो मित्र मनीष शर्मा ने। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनहरे पल कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अरे पढ़ना होनी काई हुई गयो आज।
2: हम सुनी रहे आज आकाशवाणी खंडवा निमाड़ की सुरीली धड़कन।
3: न आज तो निमाड़ की सुरीली धड़कन सुनी खना।
4: मजा आ गया।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।

आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है, समाचार प्रभात। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
2: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।

0: Play me.
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम खंडवा। अब प्रस्तुत है निमाड़ी लोक संगीत। कलाकार हैं रमेश चंद्र यादव और साथी। आरंभ कर रहे हैं श्री राम कथा से।

रमेश चंद्र यादव और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है आपकी मीत, ये गीत बस कुछ ही पलों में।

आपके मीत ये गीत। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेडियो मित्र मनीष शर्मा का नमस्कार। पहला फरमाइशी गीत है आप सबके अनुरोध पर। डेर पाटन गुजरात से धीरज वीरा बारी, पालदना का इंदौर से हसीना मंसूरी, अमीना मोहम्मद रफी मंसूरी, वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, अंकिता अनिकेत चौहान, बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मोणत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मोणत, सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी कल्पित चौहान और हिमाक्ष, मोरटक्का माफी से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति शुभम, देवी किशन, भावना मनमानस और कनिका पटेल, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, काटा रोड वाशिम से विठल सुरोशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशे, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, जालना से सोमनाथ, गीता, ओम और सुभाष जाधव, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबख्श, बेगम राबिया और शेख रहीम मुन्ना, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूना राम और कृष्णा देवांगन, ग्राम पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, शाहनगर यवतमाल से हमें ईमेल किया है राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी ने, ग्राम खगवाड़ा सनावत से तगड़ू जी सेन, धर्मेंद्र, श्रीराम, कलाबाई, सावित्री, निशा, आयुष, दीपांशी और आरुषि, राठौर मोहल्ला ग्राम जामली कला से माणक चंद्र राठौर, पुष्पाबाई, प्रियांशी और दिव्यांश राठौर, ग्राम छेगांव देवी से अशोक वाघे, वंदना और कान्हा वाघे, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद से खंडवा से शालिया डावर, हलीमा और जिक्रा डावर, धर्मपुरी धार से मूसा जी खत्री, ईशा और जाकिर खत्री, कासम कॉलोनी सनावा से यूनुस खत्री, शफी इद्रीश, नूर मीना और इरफान मीना, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल कफार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर, कल्लनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना पवार, अलमाज बानू, सबीना जहीर पवार, बाजार फैल शेगांव से मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद जुनेद और मोहम्मद रियाज, दादाजी धुनी वाले मार्ग खंडवा से मोहम्मद हसनैन, हसू, मोइन, छोटू, मोहम्मद फाजिल, भीकन गांव जामा मस्जिद रोड से साफिया अरहान खोकर, अनस शिफा खोकर, माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनिता, उदय, उज्जवल, मितांश कटारे, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता और वामिका गंगराड़े, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित वायाल, प्रथमेश कुमार देशमुख, प्रणाली देशमुख और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम थापना ओंकारेश्वर से राजेंद्र सिंह भदौरिया, ज्योति भदौरिया और इनके परिवार के सभी सदस्य, रामगंज खंडवा से विजय महोपिया, कविता महोपिया और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी का गाया ये गीत, जिसे लिखा असद भोपाली ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आया तूफान।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से फरमाइश फिल्मी गीतों का सफर जारी रखते हैं और शामिल करते हैं हमारे कुछ और श्रोताओं की फरमाइश। आप हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां, फरहत जहां, रिफत, नुजहत, साजिया, शाहीन और इनके परिवार के सभी सदस्य, छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई, दुखनी, सदफ, आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद, कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, आमना, नसरीन, आसमा, राबिया, आशु अहमद, शनि मंदिर चौक खंडवा से, दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता, गौरव, ईशान और कार्तिक सैनी, लक्कड़ बाजार खंडवा से, भवानी सिंह बैस, रिया, रोहन, अंगद ठाकुर, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ईमेल किया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा और जयवीर सिंह ने, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, नागपुर से विठल

जाधव अनुसया और पवन राजे जाधव, महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम और इनके बहुत से साथी, आज़ाद नगर लक्सर ब्याह हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, झरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह, सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम, पलक, श्रुति, यशराज सिंह गौड़, देवराज और इनके परिवार के सभी सदस्य, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे, साक्षी, ऋतुराज और पूर्णिमा पटेल, ग्राम जसवाड़ी से ही दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश, नेपानगर से प्रभुदयाल शिवदे, शिवा, बसंतीबाई और गणेश शिवदे, साथ ही श्यामाबाई रायकवार, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना सहानुभूति चक्रधर, आदिश कुमार काले, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, निशा, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, श्वेता सोनी, प्रवीण सोनी और लाला सोनी, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से हमें ईमेल करते हैं आनंद जोशी, तनुजा ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी, कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण शिमाली और मीना शिमाली, मानर्मदा श्रोता परिवार शिवकोटी ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा, ओम, सपना, धर्मेंद्र, मुकेश, द्वारकीबाई सेन और मनीषाबाई चौधरी, बुंदेलखंड से जयपाल यादव, चंद्रेश गौहर, पुष्पेंद्र रावर और फूलचंद आटोदे, कुंभार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडुरंग कुंभार, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई, सनावत जिला खरगोन से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा और राजकुमार बोडाना, छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गलनुलाल, रजक और मुरली क्षत्री, सनावद जिला खरगोन से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपीएस चौहान, दीपक, सचिन, कृष्णा, विराज, अर्णव, काव्यांशी, कृतिका और प्रभा कटारिया। आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया ये गीत, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा।

0: दी, नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
6: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
7: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
6: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
7: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
3: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
8: ओए होए, ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
9: निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके उम्मीद। ये गीत शामिल कर रहे हैं हमारे कुछ और श्रोताओं की फरमाइश। आप हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप प्रभारानी कशिश, पंचशील नगर तालुका करजा से इकबाल अहमद बागवान, शमीम अहमद, रफत अहमद, रईस

पाक अहमद जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद आलिया और अयान, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये। शामिल कर रहे हैं कुछ श्रोताओं के फरमाइशी खत। इंदौर से अनिल कवचाले, सबीहा, सुषमा, सीमा और इनके बहुत से साथी। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डोंगराव से वलीउल्लाह अंसारी और आसमानाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, सारीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, गुलफराज भागलपुरी और इनके साथी। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा और सुजाता पोहरकार, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश, बत्ता, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम, वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गभाणकर, राही सरिता गभाणकर, सिद्धांत प्रिंस एकांश गभाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गभाणकर, वैशाली श्वेता सुमित ध्वनि गभाणकर परी, ग्राम रतनपुर झिरनिया से भागीरथ नायक, जितेंद्र, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन और इनके परिवार के सभी सदस्य, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, भीकन गांव से संतोष सातले, चंदन, सारिका, रोहित, शुभम, शैलेंद्र और कंचनबाई सातले, रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो, गणेश, कार्तिक, संजना परी, ललिता नारायण, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी, छत्तीसगढ़ बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भाव्या सुषमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, ग्राम मोहत से भैया तड़वी, रीना, सनी, रोजुबाई, परु, मुबारक, विलास, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारे, भोकरी तालुका रावेर से अरशद तड़वी, आशीष आरिश, अरसलान और यूनुस तड़वी, ग्राम मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना, मुबारक, परवेज, रोजमीन, तैमूर तड़वी और इनके परिवार के सभी सदस्य, दुर्गा चौक जूनापानी सनावर से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम हीरालाल बड़ोले, तेर सिंह डाबर, साहिल हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन, वरवट बकाल से नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय हागे, ग्राम गुरावा तहसील हरसूद खंडवा से नंदलाल राजपूत, राजू, मनुक्काबाई और नंदिनीबाई राजपूत, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा, यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार, साथ ही जितेंद्र मालाकार, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी और अफजाल इब्राहिमी, जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम, इशिता, प्रियंका, सोनम वली और अफजाल मलिक। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है आनंद बख्शी की शब्द रचना, जिसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, अनवर ने इसे गाया है और फिल्म का नाम है ये इश्क नहीं आसां।

आपके मीठे गीत कार्यक्रम में ये थे आज के फरमाइशी फिल्मी गीत। अपने रेडियो मित्र मनीष शर्मा को अब अनुमति दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आपके मित्र गीत कार्यक्रम आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। अब हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक,
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम के अंत में तेरे नाम फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब

बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितो ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

0: दास हूँ सदा।
1: बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

0: लिए।
1: जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रची और इसका संगीत कनूर रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही, हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेची

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में वासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 वासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख

0: पास जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।

0: सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख है फिरोज खान का, वाचन स्वर नवनीत चौबे के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज खान, वाचन स्वर नवनीत चौबे। सिवनी जिले में मानसून के आगमन का इंतजार करते हुए किसान खरीफ फसलों की तैयारी में लग गए हैं। पिछली रबी फसल में अच्छी पैदावार मिलने से किसानों में उत्साह है। पिछले वर्ष जिले में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी हुई थी। इस बार खेती का रकबा और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए जिले में कृषि रथ रवाना किया गया है। यह रथ सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेगा। कृषि वैज्ञानिक और विभागीय अधिकारी किसानों को उन्नत खेती, जैविक कृषि और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही फसल विविधीकरण और मृदा स्वास्थ्य पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। गंगा दशहरा के अवसर पर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन लखनवाड़ा के वैन गंगा घाट पर हुआ। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह 2026 का समापन उत्साह के साथ हुआ। जिले भर के 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, किसानों और नागरिकों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और युवाओं की उपलब्धियों पर अपने विचार साझा किए। फिट इंडिया अभियान के तहत विश्व साइकिल दिवस पर सिवनी में संडे ऑन साइकिल रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। प्रतिभागियों ने नियमित साइकिल चलाने का संकल्प लिया। खेल जगत से एक अच्छी खबर आई है। एशिया कप में भारतीय अंडर 18 महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक दिलाने वाली सिवनी की खिलाड़ी नौसीन नाज का सम्मान किया गया। उन्होंने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 12 गोल किए थे। कलेक्टर ने उन्हें सम्मानित करते हुए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जागरूकता बढ़ रही है। दल सागर तालाब में आयोजित श्रमदान अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने मिलकर सफाई की। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण और हरित सिवनी बनाने का संकल्प लिया गया। इस बीच प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर जन परामर्श प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिवनी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित बैठक में नागरिकों से सुझाव लिए गए। जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से जिले के लोगों की समस्याओं का निराकरण भी लगातार किया जा रहा है। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक करीब 800 आवेदनों पर सुनवाई की गई है। भूमि विवाद, आवास, पेयजल और आर्थिक सहायता जैसे मामलों पर आवेदन प्रस्तुत हुए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। मई माह के पहले सप्ताह से अब तक 12 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की जान गई, वहीं 22 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा डूबने और आग की घटनाओं में भी 2 लोगों की मृत्यु हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सिवनी लगातार आगे बढ़ रहा है। साहित्य प्रेमियों को जोड़ने के लिए जिले में नियमित रूप से काव्य गोष्ठियां और विचार मंचों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में एक कवि सम्मेलन और मुशायरा आयोजित किया गया। खेलों की बढ़ती लोकप्रियता के बीच जिले में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन भी जारी है। धनोरा ग्राम में आयोजित DPL क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। मंडला की टीम ने लखनादौन को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल सिवनी के फुटबॉल स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिवनी विकास खंड के केकड़वानी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता कौशल्या सरोआम और सहायिका लीलाबाई यादव ने अपनी मेहनत और समर्पण से पोषण वाटिका विकसित कर एक मिसाल पेश की है। जून 2024 से शुरू की गई इस वाटिका में आम, पपीता, केला, सहजन, टमाटर, पालक और अन्य फल सब्जियां उगाई जा रही हैं। यहां तैयार होने वाले फल बच्चों और उनके परिवारों को वितरित किए जाते हैं, जबकि सब्जियों का उपयोग आंगनबाड़ी के पोषण आहार में किया जाता है। जिले में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सिवनी जिले के रामगोपाल कहार को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। रामगोपाल ने बताया कि यह आर्थिक सहायता उनके वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत को मजबूती देगी। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: आलेख था फिरोज खान का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे के। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: जिले की चिट्ठी अभी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम कोपल।

कार्यक्रम सुनने वाला सबई नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा बालक नख आपकी विशाखा बहन की राम राम। बच्चा न होनी, अब आपका स्कूल भी खुले।

कार्यक्रम सुनने वाला सबई नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा बालक नख आपकी विशाखा बहन की राम राम। बच्चा न होनी अब आपका स्कूल भी खुली गया है ना, आप सभी बच्चा बड़ी कक्षा में चली गया है। असा में आपका शुरू साल से मन लगाई करना पढ़ाई करना चाहिए। कक्षा में जी पाठ पढ़ायो जाने वालों छे ओख घर पर पहले पढ़ी कर न जाओ, और जेका सी स्कूल में जब आपके टीचर आपका समझावेगा तो आपका जल्दी सी समझ में आ जाएगा। फिर एक घर पर आई ना एक बार और वो रिविजन करी लो, एक पाठ ख तीन चक्कर पढ़ने सी आसानी सी वो आपका याद हो जाएगा। पाठ पढ़ने का बाद पाठ का पीछे का प्रश्न न ख अपनी नोटबुक या कापी में व्यवस्थित तरीका से सुंदर राइटिंग में लिखे लो, जे काशी परीक्षा का समय में आपको पढ़ने में सुविधा मिलेगा। बच्चा न होनी आप सभी अभी शुरू साल से मन लगाई कर ना पढ़ोगा तो बहुत अच्छा नंबर नसी पास होगा, न परीक्षा में आपका किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होएगा, मानसिक तनाव नहीं होएगा। बच्चा न होनी ये तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित थी थोड़ी सी बातचीत, न अब हम बात कर लेवाएं पर्यावरण संरक्षण का बारे में। बालक नहोनी हमारा आसपास को वातावरण हमारो पर्यावरण कहलाए छे, जेका में पेड़ पौधा जीव जंतु नदी पर्वत जंगल इस सब आवे। बच्चा नहोनी हम सब का हरो भरो वातावरण अच्छो लगे, हरी भरी प्रकृति बड़ी सुंदर लगे। जब भी आपको कहीं मन उभी जाए तो आप ऐसा स्थान पर घूमनू फिरनू ज़्यादा पसंद करो जहाँ चारों तरफ हरियाली होए, बाग बगीचा होए। न कभी यात्रा को विचार भी आवे तो हम ऐसा स्थान को चयन कराए जी की प्राकृतिक रूप से सुंदर होए। बच्चा न होनी कहीं हम अपना आसपास का स्थान को हरो भरो नहीं करी सकता है, बिल्कुल करी सकें यदि आप एकजुट हुई कर संकल्प लो तो ये काम संभव छे। नया पौधरोपण को सबसे अच्छो समय वर्षा काल को समय छे, बारिश का मौसम की शुरुआत होने वाली छे, तो आप सभी बच्चा एकजुट हुई कर अपना गांव का आसपास में जो भी खाली जमीन पड़ेल छे, स्कूल का आसपास में खाली जमीन पड़ेल छे, घर का आसपास में जो भी जमीन छे तो वहां पर आप पौधरोपण करी सको। तो एकालेना आपका कई करना पड़ेगा तो अभी से ये तैयारी करने को मतलब ये छे कि जी स्थान पर आप पेड़ पौधा रोपण वाला छे वो स्थान पर गड्ढा बना लो, ओका में खाद न मट्टी भरी दो, और जब उचित बारिश हो जाएगा तब ओका में पौधों रोपी दीजो। तो बच्चा न होनी आप छोटा छोटा पौधा घर पर भी तैयार करी सको, जैसे कि अभी आम को सीजन चली रहे तो आम की गुठली न होएगा तो एक गमला में या पुराना मटका में या फिर पुराना बर्तन में आप खाद न मिट्टी भरी कर ना ओका में आम की गुठली लगे दो, तो थोड़ा दिन बाद ओका में अंकुर फूट जाएगा, और फिर जब अच्छी बारिश होएगा तो उचित स्थान पर उखर रोपी दीजो। इसी तरह से जामुन आई राज तो जामुन की गुठली न कभी आप रोपी सको, आप कहीं सफर में जाई राज जामुन खाई राज तो जंगल न की तरफ ही गुठली न कब फेंकी दोगे तो वहाँ पर भी बारिश में पौधा उगी जाएगा। तो इस तरह से आप घर पर छोटा छोटा पौधा तैयार करी सको और एक रोपी सको। बच्चा न होनी खेत की मेड़ न पर भी पौधा रोपना बहुत जरूरी छे, एक ऐसी कई लाभ होएगा। जब तेज बारिश हो तो हमारा खेत की जो उपजाऊ मिट्टी छे वो बहुत सारी बही जाए, पर कदी खेत की मेड़ पर पौधा लगे रहेगा बड़ा बड़ा वृक्ष रहेगा तो ये जो वृक्ष न की जड़ छे वो मिट्टी का बहना नहीं देना की। तो इस तरह से खेत की मेड़ न पर भी वृक्षारोपण करना चाहिए। बच्चा न होनी पेड़ लगाना का और भी बहुत सारा फायदा छे, वो कही छे पेड़ अपनी जड़ नसी जमीन में पानी सूखी कर रखे, जेका सी हमारी भूमि को जल स्तर बढ़े, पृथ्वी को तापमान नियंत्रित रहे, न पेड़ वर्षा कराना में भी सहायक रहे। न बच्चा नोड़ी ये तो सबको मालूम छे कि जो पेड़ छे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़े न कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषित करे, जेका सी हमारो पर्यावरण साफ सुथरो रहे, न हमको सांस लेने में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो बच्चा नोड़ी आगत बातचीत अरु करांगा, पर अभी सुने लेवान हम इन वाली लोकगीत जिख गायो बैंड जीवन लता खेड़े ना।

0: बच्चा ने होनी अभी हमने सुनियो इनी माड़ी लोकगीत जिख गायो थो बैन जीवन लता खेड़े न ना अब हम सुनी लेवां वार्ता जिको विषय छे योग का महत्व। आना जानकारी दे रही बैन वागीशा सोनी।
1: बच्चों आज हम योग के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं योग शब्द संस्कृत भाषा के युज शब्द से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग शरीर मन और आत्मा को एक साथ जोड़कर जीवन में संतुलन स्थापित करता है। यह केवल व्यायाम करने की विधि नहीं है बल्कि स्वस्थ सुखी और सफल जीवन जीने की एक कला भी है। आज के समय में लोग तनाव चिंता प्रदूषण और अस्वस्थ जीवन शैली जैसी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में योग का महत्व और भी बढ़ जाता है। योग हमें शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है तथा जीवन में शांति संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। क्या आप लोग जानते हैं कि योग की शुरुआत कब हुई? योग की शुरुआत हजारों वर्ष पूर्व भारत में हुई थी। प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से योग की विभिन्न विधियों का विकास किया। महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र में योग के सिद्धांतों और नियमों को विस्तार से वर्णन किया है। भारत में योग का विशेष महत्व रहा है। आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। योग का महत्व समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। इस दिन विश्व भर के लोग योग करके इसके लाभों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। आइए अब हम योग के महत्वों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम योग के शारीरिक लाभों के बारे में बात करते हैं। योग हमारे शरीर को स्वस्थ मजबूत और ऊर्जावान बनाता है। नियमित योग करने से शरीर में लचीलापन आता है, मांसपेशियां मजबूत होती है और रक्त संचार बेहतर होता है। योग कई बीमारियों से बचाव करने में भी सहायता करता है। योग करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर स्वस्थ और चुस्त रहता है, मोटापा नियंत्रित रहता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, रक्त संचार बेहतर होता है, हृदय स्वस्थ होता है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है और शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा बनी रहती है। इस प्रकार योग हमें स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करता है। अब हम मानसिक लाभों के बारे में बात करेंगे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव और चिंता सामान्य समस्याएं बन गई है। योग मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। ध्यान और प्राणायाम मन को शांत रखते हैं तथा नकारात्मक विचारों को कम करते हैं। योग करने से तनाव चिंता कम होती है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, क्रोध और चिड़चिड़ापन कम होता है, सकारात्मक सोच विकसित होती है और मन को शांति और संतोष मिलता है। इस प्रकार योग व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित बनाता है। योग के कुछ आध्यात्मिक लाभ भी हम देख लेते हैं। योग करने से आत्म जागरूकता बढ़ती है, मन में शांति और संतोष आता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जीवन में संतुलन बना रहता है, प्रेम दया और करुणा की भावना बढ़ती है और व्यक्ति सकारात्मक और जिम्मेदार बनता है। इस प्रकार योग केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मिक विकास

का भी साधन है। योग व्यक्ति को आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। नियमित ध्यान और साधना से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है और जीवन के गहरे अर्थ को जान पाता है। बच्चों, विद्यार्थी जीवन आप सभी के लिए उन्नति और प्रगति करने का समय है। इसी समय में आपका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होगा। ऐसे में योग आपके जीवन में भी सहायक है। जैसे कि आप जानते हैं, नियमित योग करने से एकाग्रता बढ़ती है, जिससे आप पढ़ाई में बेहतर ध्यान लगा सकते हैं। योग स्मरण शक्ति को मजबूत करता है, जिससे पढ़ी हुई बात आपको लंबे समय तक याद रहेगी। ध्यान और प्राणायाम करने से मन शांत रहता है, जिससे आपको परीक्षा के समय होने वाली घबराहट और डर आपसे दूर रहेंगे। नियमित योगाभ्यास करने से बीमारियां आपसे दूर रहेंगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। योग करने से आप अनुशासित, आत्मविश्वासी और धैर्यवान बनेंगे तथा आप में सकारात्मक सोच का विकास होगा, और सफलता के लिए इन गुणों का होना अति आवश्यक है। साथियों, आज विज्ञान और तकनीकी ने जीवन को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ कई नई समस्याएं भी पैदा हुई है। लोग घंटों मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी के सामने बैठे रहते हैं। शारीरिक गतिविधियां कम करने के कारण मोटापा, मधुमेह, तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में योग एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय है। योग न केवल बीमारियों से बचाता है, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की भी कला सिखाता है।

वास्तव में योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन जीने की एक श्रेष्ठ पद्धति है। तो आइए हम सभी मिलकर अपने दैनिक जीवन में योग को स्थान दें और इसके लाभों को अनुभव करें। अब हम कुछ सरल आसनों के बारे में

0: इसके लिए धीरे से अपने घुटने, चेस्ट और ठुड्डी को जमीन से छुएं। आपका पेट जमीन से थोड़ा ऊपर रहना चाहिए। इसके बाद भुजंगासन है, इसे करने के लिए अपने पेट को जमीन पर रख दो। अब दोनों हाथों पर जोर देकर अपनी छाती और सिर को ऊपर उठाओ, जैसे सांप का फन उठाता है। इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। इसके बाद पर्वतासन, अपनी कमर को आसमान की तरफ ऊपर उठाओ और शरीर एक उल्टे वी की तरह दिखना चाहिए। अपने सिर को नीचे रखें। इसके बाद जो शुरुआत के आसन थे वही रिवर्स होते हैं, जैसे कि अश्वसंचालनासन, पदहस्तासन, हस्तोत्तानासन और आखिर में फिर से हम प्रणामासन की तरफ आ जाते हैं। सूर्य नमस्कार 12 शक्तिशाली आसनों का एक समूह है, जो पूरे शरीर के लिए एक कंप्लीट वर्कआउट की तरह काम करता है। इसके कुछ मुख्य लाभ हैं, फुल बॉडी वर्कआउट, यह सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर के हर हिस्से को स्ट्रेच और टोन करता है, जिससे हमारा रक्त संचार भी बेहतर होता है, पाचन तंत्र में सुधार भी होता है, वजन नियंत्रित रहता है। सूर्य नमस्कार से तेजी से अतिरिक्त कैलोरी बर्न होती है, जिससे पेट की चर्बी भी कम होती है। त्वचा और बालों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। रीढ़ की हड्डी भी मजबूत बनती है तथा तनाव से मुक्ति मिलती है और बॉडी डिटॉक्स भी होती है। इसके अलावा हम दैनिक रूप से पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। इसके लिए अपने पैरों के घुटनों को सीधा रखकर बैठ जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए अपने पैर के अंगूठों को छूने की कोशिश करें। इसके बाद ताड़ासन, इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाए और धीरे धीरे अपने एड़ियों को ऊपर उठाते हुए अपने दोनों हाथों को भी आसमान की ओर उठाएं। इससे आपके शरीर का रक्त संचार बेहतर होता है। अगला है वज्रासन। एक मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं और दोनों पैरों के अंगूठों को आपस में पास लाएं। याद रहे कि हमें अपने पैरों की एड़ियों पर बैठना है और कमर सीधी होनी चाहिए। आखिर में मैं अपने सभी नन्हे साथियों से यही कहूंगी कि हमें अपने समय का सदुपयोग कर योग को दैनिक कर्मों में शामिल करना चाहिए तथा अपने खाली समय में शारीरिक गतिविधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। धन्यवाद।
1: बच्चा नहोनी, अभी हमने सुनी वार्ता योग का महत्व। जानकारी दे रही थी बहन वागीशा सोनी। ना अब बारे छे जिज्ञासा की। तो हमारी आज की जिज्ञासा छे, भारतीय संगीत का जनक किन खा मान्यो जाए। तो भारतीय संगीत को मुख्य स्रोत सामवेद खा मान्यो जाए, न सामवेद खज संगीत को जनक भी मान्यो जाए। एकाम ऋग्वेद का मंत्र न संगीत में मंत्र नख संगीतमय न गेय रूप में प्रस्तुत करो गयो। एकासी भारतीय संगीत को जनक सामवेद मान्यो जाए। तो बच्चा नहोनी, ई तो थी आज की जिज्ञासा। न अब हम सुने लेवान एक छोटी सी कहानी। हमारी आज की कहानी छे बिना पूछवाड़ो चूहू। बच्चा नहोनी, एक चूहो यानी कि उंदरो थो, तो ओ एक चक्कर खेलता कूदता आई रो थो। तो कहीं रास्ता में ओकी पूंछ जो छे वो कटी गई। तब पूंछ कटी गई तो वो बिना पूंछ वालो हुई गो। तो असोज वो घूमी फिरी रो थो, तो जो भी ओका देखा वो ओको मजाक उड़ाओ। अरे देखो देखो, यो बिना पूंछ वालो उंदरो, अरे देखो देखो यो बिना पूंछ वालो उंदरो, ऐसा ओको खूब मजाक उड़ाव। न कहीं ओख दग्गड़ मार, तो कहीं ओख परेशान कर, तो कहीं ओख चिड़ाव। आसो तो वो बड़ो परेशान हुई गो। वो रड़तो रड़तो घर गयो। उन्हें ओकी मम्मी का कहो कि मम्मी मम्मी देखो ये हमारी जो पूंछ है वो कटी गई। तो ओके मम्मी ने समझाया, कोई बात नहीं बेटा। तो बोले मम्मी वो तो ठीक छे, पर जो बाहर हमारा जो दोस्त छे, बाहर का जो लोग छे, हमारा बराबर वाला छे, बड़ा छोटा सब ही मारो मजाक उड़े रहा है। न मखे इतो परेशान कर दियो कि देखो मखा दग्गड़ मारिया, मखा यहाँ लग गो, असो हुई गो, असो खूब रड़ने लग गयो और आप वो घर से बाहर नहीं जाए। तो ओके मम्मी भी परेशान होगी कि यार असो तो मारो छोरो घर से बाहर नहीं निकलने को, तो एको कई होएगा। तो ओके मम्मी ने को कि दिखाओ दूगा थारी पूछ जैसे गन सारी पूछने लगाई दी। तो चार पांच पूछने की मम्मी ने कुछ ऐसी कृत्रिम तरीका की बनाई और ओखा लगाई दी। आप वो बड़ो खुश होएगो और झूमी उठ्यो और बोले कि अब हो मम्मी बाहर जा रहे। तब भी वो खेलते कूद तो बाहर निकले हो, पर जसोज बाहर निकले हो फिर ही ओका चार ही तरफ से लोग ने घेरी लियो। अरे देखो देखो एक ही पाँच पाँच पूछना, अरे देखो देखो एक ही पाँच पाँच पूछना। अब उन्हों

वो यार ये तो मका हंसी रहा है, क्यों नहीं हो एक पूंछ कम कर लूं। फिर गयो तो फिरो का लोग हंसना लग गा, अरे देखो देखो एक चार चार पूछना, अरे देखो देखो एक चार चार पूछना। तो उन्हों को कि यार ये फिर भी मका हंसी रहा है, चलो एक पूंछ और कम कर लूं। फिर तब भी वो का हंसया, फिर तीन पूछना फिर भी वो का हंसया। अब उन्हें वो सब ही पूछना हटाई देना, खाली वो पहला जैसी थी एक पूछ वसो बनी गो। तब भी लोगों को हंसना लग गया। फिर वो रड़तो रड़तो घर आयो, फिर ओके मम्मी नो को समझाया कि बेटा ये दुनिया तो सिर्फ हंसग, पर तुम ख उनका से डरनू नहीं है। और इस तरह से कभी तुम डरी का ना लुकी छुपी का ना घर में बैठी जाओगे बाहर नहीं निकलना का, तो तुम्हारा विकास कसो होएगा, तुम कुछ भी नहीं करी पाना का लोग ना से डरी का ना रहोगे। तो बच्चा ने उन्हें कहानी को सार ये छे कि आप जब भी कोई अच्छो कार्य करने जाओगे तो हंसने वाला 10 रहेगा, परंतु आपको प्रोत्साहित करने वाला लोग बहुत कम मिलेगा। तो आप अगर कोई नयो काम करने को संकल्प ले रहे आज, तो ओख पूरी शिद्दत सी, पूरी मेहनत सी, पूरी लगन सी ओख करो, क्योंकि टांग खींचने वाला 10 रहे। कहेगा कि अरे अरे यो कई करी रो, यो काम तो अच्छो नहीं है, ये काम मत करो। अरे तुम कई करी सकोगे, कई लोग ऐसा भी कहे कि अरे तुम कई करी सकोगे, सीधा सीधा घर बैठो। पर नहीं, अगर आप कुछ अच्छो काम करी रहे आज, तो अपनी पूरी मेहनत लगनों का मत झोंकी दो, आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो बच्चा नहोनी इतो थी छोटी सी कहानी ना। अब हम एक निमाड़ी लोकगीत अरु सुनी लेवान, जेका गायो भाई धर्मेंद्र सरमंडल ना।

बचन होनी अभी हमने सुनियो धर्मेंद्र सरमंडल को गायो इनी माड़ी लोकगीत। एका साथ है अपना कार्यक्रम को समय यहां जी पुरो हीरोइन आपकी विशाखा बैंक आज्ञा देओ। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम कोपल। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भूपिंदर चावला यानी भूपी की गाई चंद सुगम संगीत रचनाएं। हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। अब हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: यह है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म से अभी ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। अनजान ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन की तर्ज थी।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे हैं इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

बड़े दिल वाला, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

फिल्म पड़ोसन से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और सखियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म से मुकेश की आवाज़ में। योगेश ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगीराज भारत भूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे वेद भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगीराज भारत भूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारत भूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहाँ से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।
1: बढ़ती उम्र के लिए ही योग के सानिध्य में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: जैसा कि हम सभी लोग पहले शतायु हुआ करते थे, सभी लोग कम से कम 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन जो हम लोगों की सोसाइटी, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो एक तरह से मिलावट होता गया लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे खान पीन में, सब में, जिसके कारण लोगों की उम्र जो है दर पदर थोड़ा कम होता गया। तो ये जो अभी का जो मिशन चल रहा है हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में
0: जी।
1: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए इस योग को सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए
0: और स्वास्थ्य को भी बढ़ाया जाए, है ना। अच्छा मुझे बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाए।
1: देखिए रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता है कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो अपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
0: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है ये समय?
1: थोड़ा सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट
0: जी, कम से कम 20
1: कम से कम 20 मिनट।
0: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा?
1: दिल से निकालें तो 45 मिनट, 1 घंटे कर लें तो सोने पे सुहागा है।
0: क्या बात है
1: जी
0: जी। तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय है जिस व्यक्ति के पास, वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है वो क्या क्या करे?
1: देखिए सबसे फर्स्ट जो पहला है
0: जी,
1: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए, पहला तो है श्वास
0: जी
1: से रिलेटेड।
0: हाँ,
1: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग, हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सीटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन
0: जी। तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम जो है वो बहुत जरूरी है? रामरी, शीतली,
1: जी जी जी,
0: है ना।
1: हाँ, प्राणायाम में शुरू में तो जैसे शोधन क्रिया कर लीजिए, भस्त्रिका करके,
0: हाँ,
1: अपने फेफड़े
0: सबसे पहले भस्त्रिका करना है,
1: कपालभाति,
0: सबसे पहले कपालभाति जी,
1: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी,
0: इतने सारे कर रहे हैं।
1: हाँ, अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए।
0: अच्छा,
1: ये पूरा पैकेज हो गया
0: जी।
1: ये
0: जी,
1: महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है।
0: ये जो आपने प्राणायाम बताए इतने सारे
1: जी,
0: इनका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे क्या चीजें बैलेंस होती हैं?
1: इनसे सबसे पहले तो जो शुरुआत है
0: जी,
1: कपालभाति से अपने फेफड़े की शुद्धि होती है।
0: अच्छा,
1: जो दिन भर चलते हैं, पॉल्यूशन है,

0: कार्बन डाइऑक्साइड ये क्लीन होता है, ये शुद्ध हो जाता है फेफड़ा। और भस्त्रिका है उसकी कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, कैपेसिटी उसकी क्षमता बढ़ाती है लंग्स को। और अनुलोम विलोम ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया इसको।
1: अच्छा
0: हम लोगों के शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं,
1: जी जी
0: जिसमें तीन प्रमुख नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इन तीनों को बैलेंस रखने के लिए इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम कहा गया है,
1: जी
0: जिससे नाड़ियाँ सब बैलेंस रहती हैं।
1: जी
0: और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है भ्रामरी प्राणायाम, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि लोग बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, कभी होता है कि बहुत अच्छा मूड है, कभी ऑफिस का काम पेंडिंग है, किसी से तकझक भी हुआ है, लेकिन मूड अच्छा रहता, चलो जो होगा देखा जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि सारे काम सब हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन उदास रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये मूड ऑफ और ऑन है, तो ये जो मूड अच्छा रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो
1: अच्छा
0: हमारे सिर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, भ्रामरी करने से उसमें एक सिक्रीशन टाइप का होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है, मस्तिष्क में लुब्रिकेशन बनाते हैं। जैसे इंजन में मोबिल ऑयल होता है ना, इंजन में ऑयल बराबर है तो अच्छे से चलती है,
1: जी
0: इसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी वो जो सिक्रीशन होता है उससे मूड अच्छा रहता है।
1: अब देखिए ना,
0: तो
1: हम रेडियो पर हैं
0: जी
1: तो सब कुछ हमको बोलकर ही बताना है,
0: हाँ,
1: करके दिखा नहीं सकते,
0: दिखा नहीं
1: पर
0: सकते।
1: भ्रामरी प्राणायाम वही है ना जिसमें उंगलियों से
0: हाँ,
1: आंखों को
0: आंखों को
1: ढका
0: बंद
1: जाता
0: करते
1: है।
0: हैं और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है,
1: जी
0: मुंह बंद रखना है,
1: हाँ
0: पूरा सांस नाक से अंदर लेना है
1: जी,
0: और मुंह बंद करके ही नाक से सांस को छोड़ना है और हमिंग करना है,
1: हमिंग
0: बटरफ्लाइट
1: करना
0: की
1: है।
0: तरह।

0: और
1: और
0: उससे जो कंपन होते हैं,
1: कंपन होगा अपने सिर
0: जी,
1: में, तो जब वहाँ कंपन होता तो वहाँ से फिर वो सीक्रेशन होता है
0: जी,
1: माइंड कूल रहता है।
0: क्या बात है,
1: फिर उसके बाद
0: तो प्राणायाम की बात हुई
1: जी,
0: ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है।
1: जी
0: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12-25 है ना, 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है, वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए?
1: देखिए, जो कभी नहीं किया है
0: जी
1: हाँ, तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
0: अच्छा,
1: योग का मतलब ही है जोड़ना
0: जी,
1: योग प्लस है जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपने लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः, पहले एक राउंड मतलब दो स्टेप, लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से, 12 राइट लेग से, तो एक राउंड आप पहला दिन करिए।
0: अच्छा,
1: फिर दूसरे दिन दो राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप दो राउंड तीन राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे, धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
0: बढ़ाइए,
1: बढ़ाते जाइए।
0: नहीं, कई लोग जोश में आते हैं तो फिर किसी की कमर, किसी का कुछ
1: जी, ये सही कर रहे हैं
0: जी।
1: तो जोश में आकर होश नहीं खोना है,
0: बिल्कुल।
1: योग हम कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं
0: जी,
1: योग को धीरे धीरे जोड़ना है
0: जी। सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है?
1: देखिए, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है,
1: काफी होता है।
0: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूँ। ये जो सूर्य नमस्कार है, इसके फायदे बताइए कि क्या क्या हैं। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना?
1: जी जी जी, सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है
0: जी
1: हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है, इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंग आसन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं, तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम्बो जो सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
0: मिल जाता है जी।
1: ये
0: तो
1: सबसे
0: ये
1: इम्पोर्टेंट,
0: सबसे इम्पोर्टेंट बात है
1: सूर्य नमस्कार,
0: और पूरे दिन आप बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं।
1: और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें। कभी कभी क्या है, कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं
0: जी।

0: तो उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसी हिसाब
1: और
0: से
1: आपकी जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
0: उसके
1: वो
0: अनुसार
1: बाकायदा ईमानदारी से
0: जी
1: बताना है कि
0: हाँ,
1: भाई ये
0: जिन
1: समस्या
0: जिनकी
1: है।
0: एज ज़्यादा है उनको ध्यान में रखना है
1: हाँ, मैं वही
0: इन
1: पूछने आ
0: सबको।
1: रहा था बिल्कुल कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है
0: जी
1: तो वो क्या करे और क्या ना करे?
0: कि बुज़ुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुज़ुर्गों में बहुत से हमारे ऐसे शिष्य हैं जो कि एज उनकी काफ़ी है, लेकिन बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं।
1: जी,
0: क्यों कर लेते हैं कि वो शुरू से ही
1: नियमित
0: वो
1: रूप से करते आए
0: नियमित
1: हैं।
0: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज वगैरह खूब अच्छे से करते हैं।

0: योग के प्रति, और जब से कोरोना का समय आया
1: जी
0: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, लोग
1: जी
0: अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग ध्यान प्राणायाम साधना, इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है, और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
1: वाह। अच्छा, एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है कि किस तरह से आप क्या खाएं पिएं, कैसे जिएं कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके।
0: जी रही बात वजन कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वजन को कम कर लें, तो ऐसा
1: चमत्कार
0: चमत्कार और संभव नहीं है,
1: जी।
0: क्योंकि जितने समय में जो वजन बढ़ा है,
1: हाँ, कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं जंक
0: हाँ
1: फूड
0: पाँच
1: खा
0: साल
1: खा
0: में,
1: के।
0: 2 साल में, हाँ इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी समय लगेगा,
1: जी
0: और योग से जो वजन आपका कम होगा वो ज़्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे, योग का सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका सूर्य नमस्कार से, उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से, क्योंकि
1: अच्छा
0: सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है।
1: जी,
0: हाँ जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है, तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियाँ अमीनों की तरह जुड़ती जाती हैं। तो ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेडिटेशन।
1: बिल्कुल। तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
0: कहीं भी कर
1: स्कूल में
0: सकते
1: हो,
0: हैं
1: कॉलेज में हो,
0: आप,
1: घर पे हो।
0: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन,
1: जी
0: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी
0: जी
1: खड़े हो जाते हैं
0: जी
1: और
0: जी
1: सड़क के किनारे के किसी भी चीजों को खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वजन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरह से मजे से बाहर खाता पीता रहे?
0: देखिए सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है,
1: जी
0: मस्तिष्क से ही,
1: जी
0: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को, आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं, तो आप बाहर की चीज़ों को आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे, तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया, तो कहने मतलब कि जबरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
1: जरूरत से ज्यादा नहीं।
0: जी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं।
1: जी, आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति, और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
0: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे, और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे, लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर, जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं गुरुजी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। हाँ तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है, आप देखें।

0: तो फिट ही रहते हैं,
1: जी
0: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और युवा शक्ति भी, अब हमारी जेंजी जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं, और वो सब चीज़ों को समझते हैं और हमसे आपसे ज़्यादा वो जागरूक हैं, और उनको क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नवयुवकों में तो बहुत परिवर्तन आया है, और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं। तो
1: बिल्कुल, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहाँ स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि
0: जी
1: मोबाइल हाथ में है, अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है,
0: जी
1: इसके लिए किस तरह के योग करने चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए आप।
0: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है, और मैं योगी ही योगी राज हूँ, तो हमारे जो छात्र हैं, चाहे वो जूनियर कॉलेज को हों चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो पहला कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं, जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है लैपटॉप, स्क्रीन का जो ज़माना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा योग और मेडिटेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के इस स्क्रीनिंग से। तो उसके लिए भी मोबाइल चर कह लीजिए कि मोबाइल स्क्रीन को भी अपने लाइफ में जितनी आवश्यकता है सीमित करना है, और किस फील्ड में उसे में क्या लाभ है उसको जोड़ना है, और खुद से उनको समझ करके उनके लाइफ में क्या ज़रूरी है। स्टडी बच्चों को पढ़ना भी स्क्रीन के अलावा हो नहीं रहा है, तो जो इम्पॉर्टेंट है, जितना समय सीमित है उतना ही उसको उपयोग करें, और फिजिकली वर्क में भी अपने को ध्यान दें, खेल कूद भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
1: जी, एक और बहुत ज़रूरी बात और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ, वह है हमारी महिलाएं। उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियाँ हैं,
0: जी
1: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बाहर काम करने जाता है। उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, तो वो घर भी संभालती हैं,
0: जी
1: बच्चों को भी ध्यान देना है, और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है। ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नज़रअंदाज करती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है। और रही बात उनको खुद की, अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियाँ हैं, हमारी नारी शक्ति हैं, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि इतना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है। तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकाल कर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या है कि उनको, महिलाओं को बहुत ज़्यादा चैलेंजेज होते हैं, तरह
1: जी,
0: तरह की
1: मन भी कई बार अशांत रहता है।
0: अशांत रहता है मन, और सब मन से ही सारी चीज़ें होनी है, और बहुत से ऐसी जो व्याधियाँ हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या इससे बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है जो योग, मेडिटेशन और
1: क्या
0: प्राणायाम।
1: महिलाएं सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
0: क्यों नहीं कर सकती है? बहुत अच्छे से कर सकती हैं, करती हैं,
1: जी
0: लेकिन ज़्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग हैं नारी शक्ति, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती हैं, 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती हैं।
1: लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज्यादा अच्छा
0: हाँ,
1: है।
0: सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि
1: जी
0: योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फ़ायदा होता है,
1: जी
0: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है,
1: जी
0: तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
1: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद, क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं, तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे। पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
0: हम अपने सभी

0: विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज़्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं।
1: मतलब हर साल 21 जून को करते
0: 21 जून को
1: हैं
0: साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के
1: हाँ
0: योगा मैट भी खरीद लेते हैं।
1: हाँ
0: तो एक दिन करते हैं, उसके बाद फिर रख देते हैं।
1: जी
0: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें,
1: जी
0: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें। यही हमारी श्रोताओं से हमारा निवेदन है।
1: और अब
0: और
1: हम आपसे बांसुरी सुनना चाहेंगे।
0: जी, हम बांसुरी सुनाएंगे श्रोताओं को, और इस बांसुरी धुन के साथ में हमारे श्रोता आराम से बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, तो थोड़ा सा मेडिटेशन हमारी बांसुरी की धुन पर, आंखें बंद करके श्वास लें, श्वास अंदर श्वास बाहर, अपने श्वास को देखना है
1: जी
0: और इस मधुर बांसुरी के साथ ध्यान करना है।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन आपने सुनाई और हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने इस धुन के सहारे ध्यान जरूर किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पालघर पीठाधीश भारत भूषण भारतेंदु जी, आप विविध भारती में आए और आपने योग के इतने सारे गुर हमें बताए और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। फिर से योग दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप विश्व योग दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति सुन रहे थे जिसमें योगीराज भारत भूषण भारतेंदु से आपके इस दोस्त यूनुस खान ने बातचीत की और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जुबैर खान ने। इसी के साथ आज का मैटिनी शो यहीं खत्म होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत था।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। जमीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल में आज वो गीत जहां कहीं इंतजार है, मुलाकात है और प्यार है। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। जमीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल में आज वो गीत जहां कहीं इंतजार है, मुलाकात है और प्यार है।

0: फिल्म पाप से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे, अनु मलिक ने संगीत दिया था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और एआर रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली 6 इस फिल्म से। ऐश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर 2 से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा, अंजाम फिल्म से इसे लिया गया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस

भारत में से जो शब्द हैं, उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं? तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं, मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान, रुनझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया, हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया, और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका, उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमान। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती जुलती है। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है, और जब भी बारिश की बात होती है, सावन की बात होती है, रिमझिम की बात होती है, वो गीत सबसे पहले जुबान पर आता है। तो उसी गीत से शुरुआत की जाए।

रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत योगेश का लिखा हुआ, आर डी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज़्यादा चाहने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला

ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी, लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है, रिमझिम गिरे सावन, वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है, मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करवा रही है बारिश। लेकिन आपके जो मैसेज

रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत योगेश का लिखा हुआ, आर डी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज़्यादा चाहने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी, लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है, रिमझिम गिरे सावन, वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है, मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करवा रही है बारिश। लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही पहली बरसात की यादें आप ताज़ा करना चाहें तो लिख भेजें बहुत ही कम शब्दों में, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो, मुझे लिख भेजिए।

फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं, पत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे। बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फ़ोटोज़ खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है और ऐसा ज़रूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जगा रही है, एक आस जग रही है। यहाँ पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं, बादल तो नहीं दिख रहे, बस आग बरस रही है। कहाँ से आपने ये मैसेज संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए और वहाँ का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो, लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश के बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी और इन्हें लगता है कि बारिश, ज़मीन, खुशी, अपनापन ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं या फिर कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें ज़रूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताज़ा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकहीं झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नज़रें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नज़र आ रही है। इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज़ की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था, वो उन्हें याद आता है। और गज़ल सुनना चाहते हैं, देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल हैं। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं,

और वो कह रहे हैं हम सफ़र में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफ़र का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग ना जाने किस किस चीज़ की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूँ और यहाँ तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी। बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है, उस पर ये गीत।

0: की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है और ये बारिश भी दीवानी लग रही है क्योंकि हमें बहुत सारा इंतजार करवा रही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफर में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मज़े किए। ये बचपना उनका देख कर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं, जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियाँ हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियाँ हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफ़र में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतज़ार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारें पड़ी है, जून के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज़ हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहाँ पर गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के गाने सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो निकल पड़े और ज़ोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज़ आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुँच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए, शौकिया तौर पर भी, और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियाँ हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी वर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बाराखंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है, लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नजर ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर, यही सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियाँ, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है और इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से ज़रूर बचें। बिल्कुल, जो भी ज़रूरी एहतियात है उसे बरतें और ज़रूर ज़रूर बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियाँ भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई, पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था और जहाँ तहाँ कैसे करके इंतज़ाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश। और अब ये गीत इस फेरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फ़ोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफ़र तय किया अनुराधा के संग। इजाज़त चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिलेंगी विवाह पर। एक बिटिया घर में जन्म लेती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। माता पिता का दिल हर मोड़ पर उसकी बलाएं लेता है। छोटे छोटे हाथों से रोटी बनाती बिटिया, गुड़ियाओं से खेलती बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन की पायल की वो छुन छुन धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और बिटिया के विवाह का समय आ जाता है। जिन गालों में अब तक दूध का उजाला भरा था, अब सिर पर चुनर डालते ही वो गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं। सजती संवरती दुल्हन रस्म दर रस्म किसी और की होती चली जाती है। माता पिता के मन में अनेकों सवाल उभरने लगते हैं कि नया घर हमारी बिटिया को उतने ही प्यार से तो अपनाएगा ना, लाड़ों का वर ढूंढने में हमने कोई कमी तो नहीं रखी ना, हमारी बिटिया खुश तो रहेगी ना। ऐसे तमाम सवालात के बीच बारात आ जाती है।

कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। कहीं उम्मीद की धूप है तो कभी अनजाने भय का कोहरा, कभी भीगी भीगी से जुदाई की फुहार है तो कभी आंखों में नमी, कभी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते माता पिता कई सवालों से घिरे होते हैं। इन तमाम बातों के बीच बिटिया नए घर के लिए विदा होती है। जाते समय आशीष की पोटली भी उसके साथ जाती है, जिसमें होती है कई सारी सीख और नसीहतें। उस घर को अपना बनाने की सीख, मान और प्रतिष्ठा को सहेजने की सीख, सबको अपना बनाने की सीख। भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर छोड़ देती है।

विवाह के समय लोग कई सारी तस्वीरें खींचते हैं, पर माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर अगर कोई ले पाता तो जान जाता।

विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। ये जितना स्त्री के लिए नया है उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों के मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिलन होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह

विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। ये जितना स्त्री के लिए नया है उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों के मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिलन होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह और सामंजस्य की जरूरत होती है। ये बंधन बना रहे और आगे चलकर सुखद परिणाम दे, इसके लिए घर के अन्य लोगों का सहयोग भी अपेक्षित होता है, नहीं तो ये बंधन टूटने में देर नहीं लगती। समझदारी और सहजता के साथ साथ सात फेरों के इस बंधन को प्रेम से लबरेज रखा जा सकता है। हाँ ये संभव है, हाँ ये संभव है।

0: भूमिका का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सांवेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा
1: कि आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें मुख्य रूप से दो बड़े शहर मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर, इसका जोड़ने वाला जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग है ग्रीनफील्ड मार्ग है, नए मार्ग का कुल लंबाई 40 किलोमीटर से ऊपर जो बनना है उससे हमारी इंदौर की दूरी ये काफी कम हो जाएगी। आने वाले समय में ये जो दो नगरों का साझा क्षेत्र है मेट्रोपोलिटन रीजन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमारा व्यापार, इसमें हमारी शिक्षा, इसमें हमारी चिकित्सा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय बड़े स्तर पर इनका निर्माण होने वाला है।
0: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान डायवर्जन क्लोज एक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। ये परियोजना माँ क्षिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। वहीं नर्मदापुरम में परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला विकास खंड पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालय और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है। आज भोपाल में बड़ा तालाब के बोट क्लब से लेकर टीटी नगर स्टेडियम तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और नागरिकों ने भाग लेकर स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का संदेश दिया। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को इस वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉम्सन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश कर रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसेस

0: डायरी पुस्तक का विमोचन आज भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्य मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने आज भोपाल इंदौर समेत प्रदेश के 48 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 245 नर्सिंग कॉलेजों के सत्र 2021-22 के करीब 8,000 छात्रों की परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी,

0: तेजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: शुरू होगा।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति के समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित

0: परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी

0: बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे, जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमती फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

0: कभी कभी।
1: फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्या नगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से, संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने, उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने, जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से अनजान ने, से लिखा राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाज हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी, गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने।

कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज़ों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और बिलई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

0: सांझ होती जा रही है, इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है? अभी तक किसी का भी कोई पता नहीं, और मैं यहाँ झूठ मूठ चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ?
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। हाँ? आहिस्ता, इधर इस तरफ,
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जाओ आगे।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
3: जुड़ू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
4: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी?
3: नहीं, फिलिप्स गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। This disgraceful on our part.
4: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
3: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
4: बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
5: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
3: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
3: ठहरो। कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
3: सांझ से, बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक।
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
4: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
3: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा,

0: तो अब मैं चलूं?
1: हाँ हाँ जाओगी
0: जी।
1: जाओगी क्यों नहीं। अच्छा क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
1: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइश की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
1: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे?
2: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं?
1: हाँ जाओ जाओ।
2: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मोलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
1: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
2: ओह

0: मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ माँ, माँ
1: क्यों रे बेंच, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, ये मृत्यु के अधरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का, मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।
1: चुप कर चुप कर, दीवारों के भी कान होते हैं।
0: नहीं माँ, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत गले से अपनी आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया।
1: नहीं बेंच, ऐसी बातें मुंह से ना निकाल, देखता नहीं देश भर में दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं घटती जा रही हैं।
0: मैं तो देश के बाहर नहीं हूँ माँ, घटनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हमें भी। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले मेरी कविता के लिए जरा शब्द तो बताओ।
1: कविता के लिए शब्द?
0: हाँ
1: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
0: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, इसके आगे
1: मृत्यु के अधरों छिपी है श्वास जीवन की।
0: श्वास, कोई और शब्द बोलो माँ, कोई दूसरा शब्द बोलो ना।
1: संतरास।
0: संतरास, इस शब्द में जाने कैसी भीरुता मिश्रित नीचता की गंध है माँ, ये तो कायरों की निशानी है।
1: अधरों प्यास शब्द जोड़ता है, हाँ तो फिर इसे लिखो, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
0: ओ राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक शब्द है माँ, सच माँ, माँ हो माँ, तुम कवि बेंजामिन मोलोयस की सचमुच की माँ हो, एक बहुत बड़ी कवित्री, बहुत बड़ी माँ।
1: अरे अब छोड़ भी, पागल कहीं का।
2: मासी,
0: जीनी।
1: हाँ, आ बेटी अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
2: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नज़दीक आ पहुँची है, तभी बेन से इकोनॉमिक्स के चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
1: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
2: जी अच्छा।
0: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है?
2: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
0: अच्छा होगी कोई, पर इतना जरूर है कि तुम्हारी

0: पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर, इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की। गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश। क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में। यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला। रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
1: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट एंड इन टाइम यू विल बी अ ग्रेट पोएट बेंच।
0: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है।
1: हाँ
0: हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
0: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
1: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
0: नहीं,
1: कुछ भी नहीं समझते?
0: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
1: सारी बातें मुंह से कहीं नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती है। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ? क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं? क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
0: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है जिनी।
1: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
0: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
1: बेंच,
0: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जिनी।
1: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौंक चौंक जाती हूँ।
0: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जिनी।
1: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
0: जिनी, हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही हैं।
1: अच्छा, तो मैं जा रही हूँ मौसी, अब मैं चलती हूँ।
2: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: हाँ, मौसी हो गई।
2: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
2: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है। जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव चरित्र।
1: विल यू स्टॉप टू डू?
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन। मैं तो
1: कुछ नहीं जानते तुम। उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और इन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी गलत है।

0: बेंजामिन मोलाइज भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए, हमारे लिए नहीं। इस बात को याद रखो।
1: यस सर।
0: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप सिलेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
1: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत! तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
0: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो। कॉले कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
1: ओके सर।
0: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख का डालूंगा। कमान चढ़ो।
1: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र के फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूं बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंच?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बाबू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे भला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसके कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो, आओ बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
1: न जाने, वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की, बेंच कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग, गुप्त समिति?
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें

0: चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा। उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी।
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंज जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
0: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
3: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
3: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उइसिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
0: कौन हो सकता है? कौन है? अरे, ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयंगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
2: अरे, कैसे हुआ ऐसा?
0: क्या बात है?
4: क्या हुआ?
0: खून,
5: खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
6: पुलिस ने?
7: ईश्वर, यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दलबल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
2: ओ, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
7: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं एक ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
2: ठहरिए, पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
0: बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयंगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
7: जरूर चल सकूंगा।
0: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए,
8: पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, बेटे, अब हमें क्या करना चाहिए?
2: बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
8: अच्छा, आता हूँ।
9: हैंड्स अप।
0: आप लोग
9: जरूर अंदर देखो, जल्दी, क्विक, कहाँ जा रहे हैं ये सब?
10: तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
8: जी हाँ सर।
10: ये कौन है? सर, वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
11: जी, जेम्स पिस्से।
12: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
8: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है।
10: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहाँ गया?
8: यहाँ तो कोई भी नहीं आया सर।
10: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
12: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
11: मैं सच कह रहा हूँ सर, यहाँ कोई नहीं है।
10: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूँ। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
12: मिल गया सर।
10: क्या मिल गया?
12: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
10: यू आर राइट
12: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे।

0: कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
1: तो मिस्टर जोसेफ पिस्टे, अब जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया
2: जी?
1: समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
2: नहीं नहीं जी, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी उधर,
3: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर।
4: ये आकाशवाणी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
5: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
6: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
5: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम

0: बंगाल में ही 45 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जनसमुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode, we as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop, we have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra as the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, primary agricultural cooperative society and state district gram panchayat level village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception.

0: election on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, this promise never loses its importance.
1: बिल्कुल. तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार.

0: Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में

0: था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
1: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट। These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Soni Ki Chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great.
0: Bengal, virasat, sadbhav aur vikas, Raji ki sanskritik samriddhi, samajik ekta aur vikasatmak akanshaon ko ye divas darshata hai aur ab se aaj Pradhanmantri Shri Narendra Modi ne Pashchim Bang Divas ke avsar par Pashchim Bengal ke sabhi नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government, which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers, it's not just the money that is going to the farmers, it is also fertilizers, it is also the good quality of seeds, it is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के

0: अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्रीस्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं, इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एग्रीकल्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
1: एब्सोल्युटली एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। And I want to say that it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
0: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव, किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: Absolutely, Siddharth, the word that you've used, and you had used this word earlier as well, which is sashakt banana. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question. And that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world. But he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered. You are self-reliant. Aap aatmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paayein. Aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer. You can check your bank account. You can be a part of the Digital India Mission. You can be a part of the banking system, of the financial system. You can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support. They did not have the support of the raw materials. They did not have the support of logistics. Imagine the

0: kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing truck flying in the air?
1: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र
0: माननीय
1: मोदी जी
0: प्रधानमंत्री जी का
1: हमारे
0: मंच
1: भवन में
0: पर
1: उपस्थित हैं
0: आगमन
1: और
0: हो
1: हम
0: रहा
1: उनका
0: है और वो
1: हार्दिक स्वागत
0: मंच पर
1: और
0: पहुंच
1: अभिनंदन
0: गए हैं,
1: करते हैं।
0: और चारों
1: पश्चिम
0: तरफ
1: बंगाल
0: से
1: दिवस मनाने
0: ये
1: के
0: लोगों की
1: अलावा आज
0: आवाजें,
1: माननीय
0: उनको अभिवादन करते
1: प्रधानमंत्री
0: हुए,
1: श्री
0: उनका
1: नरेंद्र मोदी जी
0: स्वागत करते हुए
1: विभिन्न
0: लोग यहाँ पर
1: मंत्रालय
0: खड़े
1: की
0: हुए
1: कई
0: हैं, और
1: परियोजनाओं
0: माननीय
1: का
0: प्रधानमंत्री महोदय
1: शुभारंभ,
0: ने अपना
1: उद्घाटन
0: स्थान ग्रहण
1: तथा
0: कर लिया है
1: राष्ट्र
0: और
1: को समर्पण करेंगे।
0: The Honorable Prime Minister
1: पंडित
0: on the
1: सार्थक
0: stage sitting along with the Governor of West Bengal, Shri R. N. Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Shri Suvendu Adhikari, people craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी
1: और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी
0: और सम्मान का प्रतीक है। पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति।
1: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए और बंगाल में माँ दुर्गा का शैली में बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: और आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला
1: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को।
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई।
2: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion, it's not just a culmination of tradition, of legacy, of heritage, of sweetness, of all the things that now people are expecting from the government. The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
1: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं।
3: वंदे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम। भारत केसरी लह प्रणाम। स्वामी प्रणवानंद लह प्रणाम। सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री गोटा पृथ्वीर सबसे जनप्रिय नेता जिनी 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर अंतरेर आत्मीय जिनी निजे के प्रधानमंत्री बोलें ना प्रधान सेवक बोलें उनाके बाबा तारकनाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे पश्चिमबंग दिवसे पश्चिमबंग सरकारेर पक्ष थेके आमी प्रणाम श्रद्धा एवं स्वागत जानाच्छि। আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন এই রাজ্যের অত্যন্ত লোকপ্রিয় একজন রাষ্ট্রবাদী রাজ্যপাল, আমাদের সরকারের প্রধান পরিচালক সম্মানীয় আরএন রবিজি এবং জনতা জনার্দন। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে এই তারকেশ্বরের পুণ্যভূমিতে माननीय प्रधानमंत्री तार व्यस्ततम शिड्यूलर मध्य उपविष्ट हुए छेन, तार कारण आमी अल्प कथाय निवेदन करब। माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसाय महामहिम राष्ट्रपति जीर संगे प्रोग्राम करे एखाने एसेछेन, ताके कलकाता फिरते हबे। तिनी आजके लोकभवने थाकबेन, आगामीकाल विश्व योगा दिवसे বন্দে যোগম কর্মসূচিতে তিনি লক্ষ লক্ষ যোগা অভ্যাসকারীদের সঙ্গে থাকবেন, তাই আমি বিস্তারিত বক্তব্য রাখব না। 1947 সালে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে এখানে হিন্দু মহাসম্মেলন হয়েছিল 4 এপ্রিল থেকে 7 এপ্রিল। সেই দিন এখানে রেজুলেশন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আমরা পশ্চিমবঙ্গকে ভারত ভুক্তি করতে চাই। আমরা কংগ্রেসের বিভীষিকাময় দেশ ভাগ যার যন্ত্রণা এখনো ভারতবর্ষের মানুষ বয়ে নিয়ে চলেছে, আমরা বাঙালি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এই পশ্চিমবঙ্গ ভারত মাতার আশ্রয়ে আমরা শরণ নিতে চাই, এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এর আগের কংগ্রেসের সরকার, কমিউনিস্টের সরকার, তৃণমূলের সরকার ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির এই অবদানকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ দিবস সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গে পালন করেননি। তারকেশ্বরের সেই মাহাত্ম্য ধরে রেখে আজ বিশা জোর

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country, various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways, so many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: जी हाँ प्रधानमंत्री, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आरएन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि

पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है।

बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही

एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किस्से कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी,
उस विचार को भी खत्म करने की

कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जनकल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं,

आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट मानी शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने,

स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है, जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा।

0: मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो, आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।
3: आप सुनी रहे आज निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
4: फोन करें, गीत सुने। आपकी आवाज, आपके जज्बात, आपकी ही पसंद। फोन करें, गीत सुने।
5: वेलकम फ्रेंड।

0: सभी श्रोताओं को पराग का नमस्कार। श्रोताओं, फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं हमारे कुछ श्रोताओं की पसंद से, और इन श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स को हमने रिकॉर्ड किया गुरुवार को दिन में 11 बजे से 11:30 के बीच। तो शामिल करते हैं आज हमारे फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम में श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स। पहला फ़ोन कॉल किसका है, आइए सुनते हैं। हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम, किन की आवाज़ है ये?
1: आरुषि सेन।
0: आरुषि जी, कैसे हैं आप, क्या काम करते हैं आरुषि?
1: पढ़ाई करती हूँ।
0: अच्छा, कौन सी क्लास में, कहाँ, क्या पढ़ते हैं?
1: टेंथ में।
0: अच्छा, टेंथ में है, ओके। तो इस साल यानी बड़ा कठिन साल है इस बार तो।
1: यस सर।
0: तो CBSE से पढ़ते हो या स्टेट बोर्ड वाला है आपकी स्कूल?
1: स्टेट बोर्ड वाला।
0: स्टेट बोर्ड वाली है, तो पढ़ाई अब तो शुरू हो गई होगी आपकी?
1: हाँ।
0: अच्छा, कौन सा विषय बहुत अच्छा लगता है आरुषि?
1: साइंस।
0: अच्छा, साइंस अच्छा लगता है। तो साइंस में तो अपने को जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, तो ये तीनों में से कौन सा?
1: फिजिक्स।
0: अरे बाप रे, तो आज तो आपकी यानी क्लास लगा दी हमने, है ना। आरुषि, कौन सा गाना सुनना चाहते हो, कहाँ रहते हो आप?
1: खंगवाड़ा।
0: खंगवाड़ा रहते हो, अच्छा।
1: हम आपके है कौन का कोई सा भी सुना दो।
0: अच्छा, कौन सा गाना?
1: दीदी तेरा देवर दीवाना। थैंक यू सर।
0: ओके जी, थैंक यू।

0: हेलो, फोन करेगी सुने कार्यक्रम।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गीता रामपुर से डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र। कैसे है सर आप?
0: बहुत बढ़िया है सीताराम जी, आप सुनाओ।
1: भी बढ़िया है, अच्छे सुरक्षित है सर। अभी तो मई महीना हो चुका है और ये भी महीना खत्म हो रहा था। अभी तो हमारे इधर तो बहुत धूप आया, बहुत गर्माहट हो रही है सर।
0: सभी दूर यही हालत है। अब तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द बारिश आ जाए।
1: जी सर, जी सर,
0: हाँ, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
1: जी सर, पानी के तो बहुत, पीने के वो टैंकर से पानी चल रहा है सर हमारा।
0: अच्छा, तो क्या पीने का पानी टैंकर से बुलवा रहे हैं या फिर?
1: टैंकर से बोला रहे, ग्राम पंचायत से बोला, दो टैंकर है सर। सुबह 9 बजे तक दो टैंकर आते हैं और 5 बजे तक और दूसरी खेप दो टैंकर आते, 4 टैंकर रखते हैं सर हमारे गांव।
0: पूरे गांव में बटते हैं ये।
1: हाँ जी सर, जी सर,
0: अच्छा
1: जी
0: जी,
1: सर।
0: अच्छा जी। तो आसपास कोई डैम वगैरह, नहर या फिर ऐसा नदी वगैरह कुछ नहीं आपके गांव के आसपास?
1: नदी नहीं सर, बहुत 5 किलोमीटर एक छोटा सा तालाब है सर,
0: जी,
1: अब उसके पानी टैंकर से लाता है वो।
0: अच्छा। तो इस बार गांव में आप प्रचार करिए ना कि हम पानी रोको अभियान चलाएं, जो बारिश का पानी है वो जमीन में अंदर जाए ताकि सारे कुएं और जो और जल स्रोत है वो अच्छी तरीके से तृप्त हो जाए, तो अपने को जो गर्मियों में पानी की कमी महसूस होती है वो नहीं होगी।
1: हाँ जी सर, पानी की तो मदद हो जाएगी।
0: अपन अपनी तरफ से ही किसी गांव में ही अपन आप जागरूकता फैला सकते हैं। जो पानी अनावश्यक बह के चला जाता है वो
1: जी सर,
0: पानी जमीन में रिसेगा और फिर कुओं का ही लेवल बढ़ेगा,
1: जी सर, जी
0: है
1: सर,
0: ना?
1: और हमारी समस्या भी दूर हो जाएगी सर उसके
0: आपकी
1: साथ साथ।
0: समस्या भी दूर हो जाएगी। ये हर साल 4 टैंकर रोज के बुलाने पड़ते हैं।
1: जी सर, जी सर, जी
0: जी
1: सर,
0: सीताराम जी, कौन सा गाना सुनना है फिर आपको?
1: आज के खजुआ आता शामिल गाना सुनना है सर चांदनी, और गाने के बोले तेरे मेरे होठों पे।

0: जी तो अवश्य सुनेंगे। तो पहले अपने आकाशवाणी खंडवा परिवार को 90 वर्ष की जो सफल यात्रा पूर्ण हुई है उसके शुभ अवसर पर हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज के डिजिटल युग में भी हम सभी श्रोता, देश भर के श्रोता आकाशवाणी सुनना पसंद करते हैं। इसका कारण एकमात्र यह है कि आकाशवाणी से जो भी जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सभी वर्ग के श्रोताओं के लिए उपयुक्त होते हैं। ज्ञान, संस्कार और जागरूकता सभी ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का शेड्यूल बनाया जाता है। और आप सभी जो ज्ञानी और मेहनती उद्घोषक है, केंद्र प्रमुख है, उन सभी का जो हम श्रोताओं के प्रति जो एक आत्मीय भाव है, आत्मीय रिश्ता है, वो ही आज तक रेडियो को जीवंत रखे हुए है सर जी। तो इसी कारण हमें, हमारा रेडियो से बहुत ही पुराना और अटूट रिश्ता है और आने वाले सालों में भी आकाशवाणी के साथ ये रिश्ता अटूट रहेगा।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर संतोष जी। इच्छा तो है आपसे और बातचीत करें लेकिन समय सीमित है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी पसंद बताएं ताकि हम उसे शामिल कर सके कार्यक्रम में।
0: हाँ जी बिल्कुल सर जी, एक फिल्म आई थी 2003 या 4 में, शाहिद कपूर जी वाली, और फिल्म का नाम है इश्क विश्क, और गीत के कुमार शानू जी और अलका याग्निक जी की आवाजों में, धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार।
1: बहुत बढ़िया गाना है वैसे।
0: हाँ जी, 90s के सॉन्ग हम बहुत पसंद करते हैं और आकाशवाणी खंडवा से कई बार हमें ये सॉन्ग सुनने को मिलते हैं ऐसे सॉन्ग, तो इसलिए हम आकाशवाणी खंडवा अधिकतर सुनना पसंद करते हैं।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। जरूर सुनिए आपकी पसंद का गाना।

0: शाम भी कमाल की होती है, दिन भर की थकान को चुपचाप समेट लेती है। सूरज ढलते ही यादों की चाय बनती है और खामोशी दिल से बहुत कुछ कह जाती है। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का शनिवार की इस शाम में। स्वीकार कीजिएगा आपकी रेडियो दोस्त सिमरन गार्गव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं लेकर क्रम साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियाँ। पर साथियों, हफ्ते भर की गतिविधियों को जाने उससे पहले आज के प्रश्न पूछ लेते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला विज्ञान संग्रहालय और विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, खेल में विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड तेजी से शतक किसने बनाया? दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक हमारे साथ बने रहिए युववाणी में।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दी,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: आइए दोस्तों, आज की चर्चा के अंतर्गत हम आपको सुनवाते हैं सीमा बोरियाले जी से की गई विशेष बातचीत।
5: नमस्कार, मेरा नाम सोना बोरियाले है। मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर वर्तमान में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुड़ीखेड़ा में हिंदी विषय से कार्यरत हूँ।
0: जी सोना जी, हमारे आज के युववाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: जी धन्यवाद मैम।
0: जी सोना जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप एक शिक्षक के रूप में भी कार्य कर रही हैं।
5: जी।
0: आप एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आपने इस जॉब के लिए कितनी मेहनत की और कैसे आप यहाँ तक पहुँची?
5: मैं बताना चाहूँगी कि मैंने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के माध्यम से मैंने वर्ग एक की नियुक्ति प्राप्त की थी। 2018 की शिक्षक पात्रता चयन परीक्षा में शामिल हुई। मेरी नियुक्ति 2021 में हुई थी। हिंदी विषय से मैंने तैयारी की थी। मेरी तैयारी पूर्व से थी, मैं लगातार तैयारी कर रही थी, लेकिन चूंकि वैकेंसी बहुत लेट आई हमारी 2011 के बाद में 2018 में वैकेंसी आई, तो हमको एक लंबा इंतजार करना पड़ा। एग्जाम हुई, एग्जाम के बाद भी हमको हमारा इंतजार खत्म नहीं हुआ।
0: जी।
5: 3 साल तक हम कोशिश करते रहे, उसके बाद 2021 में हमको नियुक्ति मिली। इस तरह से 2021 में मेरी नियुक्ति हुई थी।
0: सोना जी, आप अभी शिक्षक के रूप में कार्य कर रही हैं, तो गवर्नमेंट के लिए आपने तैयारी कैसे की और आप कैसे स्टडी करती थी?
5: जी मैम, जब मैं इस वर्ग एक की परीक्षा की तैयारी के लिए, मैं शुरू से ही जब मैं मेरा MA चल रहा था, तो मैं सिलेबस को काफी बारीकी से पढ़ती थी। वो जो MA का सिलेबस था, वो सिलेबस मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा, और मैंने विशेषकर NCERT की बुक से भी पढ़ी। मैंने किसी तरह का कोई कोचिंग तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जो सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना था, तो उसके लिए मैंने बिल्कुल समय निकाला और तन्मयता से उसको पढ़ा। इस बीच कहीं सारी चुनौतियां आती हैं, जैसे कि पारिवारिक समस्याएं होती है। अगर आज कहीं सारे कैंडिडेट

0: में जुटे हुए हैं, और इस बीच में चूंकि हम लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वैकेंसी नहीं आती है, एक लंबा ड्यूरेशन हमको फेस करना होता है, तो उस समय हम मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से कहीं कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बीच हमें हमारे लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, हमें इन समस्याओं से जूझते हुए ही तन्मयता से हमारे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैंने वही किया, उसी के आधार पर मेरा मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया और इस तरह से मेरी नियुक्ति हो पाई थी।
1: सोना जी, मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगी। आज खास आपसे इसीलिए जुड़ी हूँ कि अभी जो वर्ग 1, 2, 3 की भर्ती निकलने वाली है, तो आप हमारे युवा साथियों को बताइए कि उसके लिए उन्हें क्या करना होगा और वो कैसे उस परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं।
0: जी मैम, मैं बताना चाहूंगी। भारत में सरकारी शिक्षक बनने के लिए मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। प्राथमिक शिक्षक, जिसको हम PRT कहते हैं, और उसके लिए हमारी शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना, साथ ही DED की प्रशिक्षण डिप्लोमा अनिवार्य होता है। इसी तरह से अगर TET की बात करें, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें, तो इसके लिए किसी भी विषय से आपको ग्रेजुएशन अनिवार्य होता है। अगर
1: जी
0: PGT की बात करें कि पोस्ट ग्रेजुएशन, PGT टीचर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी विषय से करना अनिवार्य होता है, साथ ही प्रशिक्षण डिग्री BED अनिवार्य होता है। ये सभी विषय आपको कम से कम 50 अंक में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद पात्रता परीक्षा पास करनी होती है। पात्रता परीक्षाएं जैसे KVS के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए, NVS में भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य होती है। साथ ही वही CTET की बात करें, राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात करें, तो राज्यों के सरकारी स्कूलों के लिए जरूरी है। यह परीक्षाएं केवल क्वालिफाइंग होती है। मुख्य चयन परीक्षा में आप पार्टिसिपेट करते हो, और मुख्य परीक्षा चयन परीक्षा के मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। मैं आज के जितने भी युवा तैयारी में जुटे हुए हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहूंगी कि सिलेबस के आधार पर ही वे तैयारी करें। जो सिलेबस पात्रता परीक्षा के लिए वो शामिल होना चाहते हैं, उस सिलेबस को वो काफी अच्छे से पढ़े और NCERT की बुक्स पढ़े। साथ ही अभी चूंकि कंपटीशन तो हो ही जाता है, इसलिए लगातार हमें मॉक टेस्ट भी लगाना चाहिए, और विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनको हल करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र इसमें होता है, इसलिए शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को भी विशेष रूप से पढ़ा जाए। जो सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं, उन टॉपिक्स नोट्स के माध्यम से तैयार किया जाए, ताकि हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और मेरिट लिस्ट में हम स्थान प्राप्त कर सके।
1: जी सोना जी, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी और आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, थैंक यू मैम।
2: अभी आप सुन रहे थे आज की चर्चा के अंतर्गत सीमा जी से की गई विशेष बातचीत। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कर्म की ओर। हर चीज तब तक असंभव लगती है जब तक कि उसे कर नहीं दिखाया जाता। कहीं कुछ अद्भुत है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जिसे हम कभी सोच भी नहीं पाते थे।

अद्भुत है जो खोजे जाने का इंतज़ार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जिसे हम कभी सोच भी नहीं पाते थे। दोस्तों, ऐसे ही DRDO ने स्वदेश में विकसित लंबी दूरी की भू आधारित आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की भू आधारित आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दोस्तों, यह मिसाइल स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है जिसके सभी उप प्रणालियाँ DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों द्वारा विकसित की गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और इसका सफल परीक्षण आत्मनिर्भर भारत और एक मजबूत राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, क्रूज मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई भी दी। दोस्तों, हम भी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गीत।

चांद हो या मंगल ग्रह, सब पर अपना परचम लहराया है। कड़ी मेहनत और लगन से भारत का मान बढ़ाया है। अंतरिक्ष के सागर में इसरो ने ऐसा इतिहास रचाया है। हम भारतीय को अपने वैज्ञानिकों पर सदा ही नाज आया है। दोस्तों, इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग मिलकर लूनर लैंडर के लिए उन्नत कृत्रिम तापमान प्रणाली विकसित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए कार्य किया है। दोस्तों, इसरो प्रमुख वी नारायण ने बंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा लैंडर चंद्रमा पर ऐसा लैंडर तैयार करने पर काम कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहे और इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। दोस्तों, चंद्रमा पर रात और दिन लगभग 14-14 पृथ्वी दिवस के बराबर होते हैं। दिन का तापमान 121 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, रात में 0 से 129 तक पहुंच जाता है। साथियों, इसरो ने 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इससे मानव युक्त गगनयान मिशन के लिए औषधि तैयार करने में मदद मिल सकेगी। चलिए दोस्तों, बारी है कार्यक्रम के अगले गीत की।

दोस्तों चलिए बढ़ते हैं खेल गतिविधियों की ओर। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। दोस्तों मेरी इन बातों से आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ खेलों की। दोस्तों हार और जीत तो खेल का एक अहम हिस्सा है, पर जो हारकर भी हार न माने वो ही हमारे खिलाड़ियों की पहचान है। दोस्तों मेघालय ने शिलांग में अपने पहले खेल सम्मेलन की मेजबानी की। 2027 में होने वाले 39 राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के अनुरूप एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उद्घाटन में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि राज्य का दृष्टिकोण खेलों की पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण है, ताकि जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को पहचान मिल सके और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। ये सम्मेलन खेल प्रशासन, नवाचार, एथलीट विकास को आकार देने में सहायक होगा। दोस्तों चलिए हम मुड़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

दोस्तों लंबे समय से चल रहे फीफा 2026 में मेजबानों के नाम रहा आठवां दिन कनाडा को एक तरफा शिकस्त दी। मैक्सिको नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सह मेजबान कनाडा ने इतिहास रच दिया। वैंकूवर में कनाडा ने कतर को 6-0 से हराकर विश्व कप इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की। जोनाथन डेविड ने शानदार हैट्रिक लगाकर कनाडाई फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया। कनाडा यूरोप दक्षिण अमेरिका के बाहर का पहला देश बन गया है जिसने किसी विश्व कप मैच में 5 या उससे अधिक गोल किए। दोस्तों आज के मैच में मेजबान अमेरिका ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर लिया है। आज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। अमेरिका ने 32 साल बाद नॉकआउट राउंड में जगह बनाई है, जबकि तुर्की एक अन्य मैच में पराग्वे से हराकर बाहर हो गई। पहले मुकाबले में पराग्वे को 4-1 से हराया था। टीम ग्रुप डी में 6 अंक के साथ पहले स्थान पर है। होस्ट मैक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप ने नॉकआउट राउंड में पहुंच गई है। वह टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली इस एशियन की पहली टीम बन गई। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम समाप्त करें उससे पहले आपको बता देते हैं हमारे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न था, भारत का पहला विज्ञान संग्रहालय और विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, खेल में विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड तेजी से शतक किसने बनाया? इसका उत्तर है साकिब उल गनी और वैभव सूर्यवंशी ने। दोस्तों ये तो थे हमारे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की दे अनुमति आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट सिमरन गार्गो को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM बैंड 101.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के ठीक 6:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: आप सुनी रहे आज निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
0: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो

0: प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
0: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में 2 संपर्क अधिकारियों और 1 चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुनी रहा नी माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
1: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।
3: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
4: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
3: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
4: क्यों?
3: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
4: वो कैसे?
3: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
4: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
3: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
4: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
3: आप कब आ रहे हैं
4: आकाशवाणी खंडवा पर?

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुनी रहे आज निर्माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
2: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
4: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
5: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
4: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
5: क्यों?
4: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
5: वो कैसे?
6: 7:10 हुए हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
7: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
8: TLI है ना?
9: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सूनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 9,44,00,000 से किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। इंदौर में 2,935 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का हुआ भूमि पूजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। और भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी गरज चमक और बारिश के का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। 9,44,00,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की

0: धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार पश्चिम बंगाल दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज भाजपा सरकार में विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है।
1: सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरांग में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी आबादी

0: किया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरांग में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी आबादी द्वारा दशकों से झेली जा रही अभावग्रस्तता की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और सामाजिक उन्नति के नए अवसर मिल रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सावेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकास का पर्याय बनेगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को व्यापक लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से मेट्रोपोलिटन रीजन के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में दूध, फल और सब्जियां लेकर मोटरसाइकिल से परिवहन करने वाले किसानों के लिए हेलमेट वितरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
2: मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए, इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया कि हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे। हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है। प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। सुना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा।
1: इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान्हा डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। यह परियोजना माँ छिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के बाड़ी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जन कल्याण शिविर में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री चौहान ने भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों के लिए मूंग खरीदी की औपचारिक स्वीकृति और कम बारिश की आशंका के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार के साझा कंटिजेंसी प्लान का ऐलान किया।
3: भारत सरकार से मूंग खरीदी की अनुमति मांगी है और आज ही बाड़ी की इस पवित्र धरती से मूंग खरीदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सकें। ये मूंग अपनी तीसरी फसल है और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है, उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी।
1: नीट यूजी पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। जबलपुर जिले में परीक्षा के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,426 परीक्षार्थी शामिल होंगे। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों पुनः स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। समारोह सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी

0: बागमती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है।
0: केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सकीय औचित्य नहीं और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। प्रदेश में मानसून 25 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है। फिलहाल प्री मानसून गतिविधियों के चलते मौसम में बदलाव बना हुआ है और आज भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने आज सीहोर और आगरमालवा जिले समेत 38 जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैयर, उमरिया, शहडोल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार और खरगोन जिलों में तेज धूप और उमस बने रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बीते 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। झाबुआ में 5 और 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आगरमालवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कल मास्टर वॉलंटियर्स को जिला स्तरीय नशा मुक्ति जन जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया और झाबुआ कलेक्टर ने जिले में खुले और अनुपयोगी बोरवेलों से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जब तक निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा ने सुनी लेती है, जब तक तमख चैनन ने मिलतो है। तो आप भी सुनी लो निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है नियमित कार्यक्रम किसान वाणी।

कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहन का आपका भाई ओम प्रकाश चौरे के राम राम। भाई बहन होनी हमारा सभी भाई नना खेत की तैयारी करी ली होगा। खरीफ का फसल का लेन गहरी जुताई, मिट्टी को परीक्षण, बाजार से उच्च गुणवत्ता का बिजाई का लेन बीज, जैविक खाद, रासायनिक खाद और साथ ही कीट नियंत्रण करने जैविक कीटनाशक की खरीदारी भी प्रारंभ कर दिए गए और हमारा कुछ किसान भाई ने तो ले भी लियो होगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इना वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्य से कम मतलब कि 90-95% रहने की संभावना है और मध्य प्रदेश में मानसून की जल्द ही आने की संभावना है। एक देखते हुए क्षेत्र की जलवायु, पानी, मिट्टी का पोषक तत्व और अन्य बातों का ध्यान देता हुआ फसल को चुनाव और किस्म को चुनाव हमका इनावार सोची समझी का करना पड़ेगा। घर में रखा हुआ बीज की बुआई का पूर्व अंकुरण की जांच अवश्य कर लेवा। एकालिए जूट का बोरा का टुकड़ा का गीला करीका निचोड़ी का ना उमा गिनती करीका लाइन से 50 दाना रखा और जूट का बोरा का टुकड़ा का रोल बनेगा ठंडा एवं छायादार स्थान पर रखी का और आवश्यकता के अनुसार हल्को पानी को छिड़काव करते रहे। 8-10 दिन में दाना का अंकुरण हो जाएगा तब वह परीक्षण में देखा कि 50 दाना में से 35 से अधिक दानों का अंकुरण यदि हो तो वो बीज जी छे बुआई के लिए उपयुक्त रहेगा। भाई बहनों ने किसान भाई धान का रोपा की तैयारी का लेन जिना क्षेत्र में धान लगाना हो वो 1/10 हिस्सा में धान को रोपो लगाना चाहिए। 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर उठी भी क्यारी बने लेनी चाहिए। 9 रोपाई करनी चाहिए। 1 एकड़ का लेन धान का बीज 8-10 किलो पर्याप्त छे। धान का बीज का 10-12 घंटा भिगोई करना फिर ओखा निकाले करना जूट का बोरा में 2-3 दिन तक रखा और अंकुरित धान का फपून नाशक दवा सी बीज उपचार कर बीज का उठी हुई क्यारी नंबर डालनी चाहिए। धान की नर्सरी खेत का ऊपरी स्थान पर रखा जहां जल भराव नहीं होता है और उसकी देखभाल भी उचित प्रकार से करनी चाहिए। अब हम जी छे प्याज की तैयारी के बारे में बात कर ले। खरीफ प्याज जी छे वो उन्नत किस्म को भीमा रेड, भीमा सुपर N53 किस्म को चयन करनी चाहिए। उठी हुई क्यारी में फपून नाशक दवा से उपचार करने का रोपो लगानु चाहिए और साथ में भाई बहनों ने जो जरूरी चीज है जी जल संरक्षण की छे कि वर्षा जल का संचयन कर लेना, खेत का निचला स्थान पर पोखर पांड को निर्माण करना चाहिए और खेत का चारों ओर मेड़ बंधान, बोरी बंधान, गेवेन स्ट्रक्चर को उपयोग करी करना पानी को संचयन करना चाहिए जैसा से जल स्तर जी छे हमारा खेत को बढ़ेगा और हमका कम सिंचाई में हमारा उत्पादन भी अच्छा हो पाएगा। और एक साथ हम देखा भाई जो हमारा किसान भाई बहन ने पहले से तालाब मछली पालन कर लेना बने लिया है वो इना समय तालाब का सुखई करना उमा जुताई कर चूना की 250-300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दरसियों को छिड़काव करनी चाहिए। तो ये तो भी गई हमारी आपसे बातचीत। अब हम आपको सुने देवा एक निमाड़ी लोकगीत जिसका गायोज आनंद राम साथी ना।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा योजना।

0: हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
0: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भाई बहनों, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस छे, इना संबंध में हमका कुछ जानकारी होनी जरूरी छे। योग भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा का विश्व का दी गई एक अत्यंत अनमोल और अद्भुत देन छे। ये केवल शारीरिक कसरत नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला और विज्ञान छे। हर वर्ष 21 जून का दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद उत्साह का साथ मनाया जाएगा। इना दिन इस बात को प्रतीक छे कि प्राचीन भारतीय पद्धति न आज का आधुनिक युग में भी कितनी प्रासंगिक और प्रभावी छे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत का श्रेय भारत का प्रधानमंत्री को जाए 27 सितंबर 2014 का संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण के दौरान उन दुनिया के सामने योग दिवस मनाने को प्रस्ताव रखे थे। भारत का इस प्रस्ताव का वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन मिले और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश ने इस प्रस्ताव का बिना किसी हिचकिचाहट का स्वीकार किया। एक बाद 21 जून 2015 का पहलो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व में मनाया गया। 21 जून का चुनने के पीछे भी एक खास कारण है। इना दिन ग्रीष्म संक्रांति का हो जो उत्तरी गोलार्ध में साल को सबसे लंबो दिन हो वो इना दिन मनुष्य का दीर्घ आयु होने की कामना का दर्शावज। संस्कृत की युज धातु से बना योग शब्द को शाब्दिक अर्थ हो जोड़ना या एक होना। आध्यात्मिक स्तर पर एक अर्थ जीवात्मा का परमात्मा से मिलन छे, जबकि व्यवहारिक स्तर पर यह हमारा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का बीच संतुलन स्थापित करे। भाई बहनों, होनी महर्षि पतंजलि को योग का जनक मानो जाए, जिनने अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का माध्यम से मनुष्य का अनुशंसित जीवन जीने को मार्ग दिखाया। योग हमका दिखावत कि किस प्रकार से बाहरी दुनिया की भागदौड़ के बीच हम अपना भीतर शांति की खोज करी सका। कर्मेशु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता लानो ही योग छे। जब व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और स्वस्थ हो तो की कार्य क्षमता अपना बढ़ी जाए। आधुनिक युग में योग का महत्व आज की आधुनिक जीवन शैली में जहां सुख सुविधा ने बढ़ी, वहीं तनाव, अवसाद, मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग कलेण एक सुरक्षा कवच की तरह काम करे। विभिन्न योगासन जैसा कि सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, भुजंगासन का नियमित अभ्यास से शरीर लचीलो, मजबूत, ऊर्जावान बनाज। ये हमारा रक्त संचार और रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी मजबूत करज। प्राणायाम सांसों को नियंत्रण और ध्यान का जरिए मस्तिष्क की शांति मिलज। ये तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार न का दूर कर मानसिक एकाग्रता का बढ़ावज। भाई बहनों, ने योग व्यक्ति को अपनी भावना पर नियंत्रण को सिखावज, जेका से जीवन में सकारात्मक और धैर्य को संचार होज। वैश्विक एकता का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न भौगोलिक सांस्कृतिक सीमा को मिटे दियो। आज न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस का एफिल टावर तक और भारत का हिमालय से लेकर रेगिस्तान तक करोड़ों लोग एक साथ मिलकर योग करज। इन दिन वासुदेव कुटुंबकम, पूरी धरती है मारो परिवार छे की भावना का चरितार्थ करज। योग किसी धर्म या संप्रदाय को नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का कल्याण को साधन छे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मात्र एक दिन को उत्सव नहीं है बल्कि यह खुद को स्वस्थ और जागरूक बनाए रखना का एक निरंतर चलने वाला संकल्प छे। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी स्वास्थ्य का बनाए रखने के लिए योग की सराहना करी चुके हो। यदि हम एक समृद्ध, शांत और रोग मुक्त समाज को निर्माण करना चाहें तो हमका योग को केवल 21 जून तक सीमित नहीं रखना है बल्कि वह दैनिक जीवन शैली में एक अनिवार्य हिस्सों बनानो। सभी भाई बहन का कल 21 जून की पूर्व संध्या पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामना। भाई बहनों, अब बारी छे वार्ता की, तो सुनान खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन, इना विषय पर वार्ताकार छे।

0: धर्मेंद्र मोहर।
1: किसान भाइयों राम राम। आज हम खरीफ फसलों में कीट शत्रु कौन कौन से आते हैं उन सब का प्रबंधन के बारे में समझेंगे। तो आइए जानते हैं, खरीफ मौसम में हमारे देश में विभिन्न धान्य दलहन तेलन अन्य फसलें लगाई जाती हैं। इन फसलों को भेदक रस चूसक पत्ती एवं फलीवच्छक जो अन्य प्रकार की कीटों द्वारा महत्वपूर्ण क्षति पहुँचती है। उन कीट शत्रुओं द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में औसतन 10-25% तक उपज नष्ट कर दी जाती है। इनका यदि यथासमय उचित नियंत्रण कर किसान बंधु करें तो फसलों के प्रति इकाई उत्पादन में सार्थक वृद्धि अर्जित कर लाभ अर्जित कर सकते। तो आइए जानते हैं कौन कौन से कीट जो खरीफ फसल में आते हैं, किन किन फसलों में। पहला भेदक कीट। किसान भाई सामान्यतः धान ज्वार बाजरा सोयाबीन तथा अन्य फसलों को अलग अलग भेदक कीटों की जो इल्ली अवस्था है वो उसके द्वारा क्षति पहुंचाई जाती है। धान फसल में जब क्यारियों में पौध से बाली निकलने लगती है उसमें पीली गुलाबी दो प्रकार की भेदक कीटों का प्रकोप होता है। अब इनमें इल्लियां जो रहती है वो कल्ले बनते समय नए कल्लों के नीचे और बाली बनते समय बाली के पास से तने के अंदर से प्रवेश उसको खाती है। उसके बाद क्या होता है, छोटे पौधे जो रहते हैं उनकी फुनगी सफेद बिल्कुल सूख जाएगी और बड़े पौधों पर कली सफेद पड़ जाएगी। तो यहाँ दाने नहीं बनेंगे, बालियां हाथ से खींचने पर निकल जाती हैं। और ये हो गए भेदक कीट। अब ज्वार मक्का में तना छेदक इल्ली आरंभ में क्या करती है, कोमल पत्तियों के ऊपर पोंगली के अंदर रहकर उन्हें खाती है। उसके बाद तने में प्रवेश कर अंदर ही अंदर भोजन प्राप्त करती रहती है। इससे क्या होता है कि तना सूख जाता है। इसके पश्चात तना जब सूख जाएगा तो उसकी ऊंचाई जो है पौधे की वो एक सीमित रह जाती है, बौनी अवस्था उसकी रह जाएगी। ऐसे पौधों में बाजू से कल्ले फूटते हैं और एक ही पौधों पर कई पौधे दिखाई देंगे। ऐसा दिखाई देगा जैसे एक ही पौधों पर कई पौधे आ गए, एक ही पौधे पर बहुत सारे पौधे आ गए। इसका प्रकोप भुट्टे के डंठल पर भी होगा जिससे भुट्टा टूट कर गिर जाएगा, क्योंकि एक ही पौधे का वजन सहन कर पाएगा। इसलिए इस तरह से फल तथा तना भेदक इल्ली आरंभ में अरंडी फसल के पौधों की शाखाओं में प्रवेश कर उन्हें क्षति पहुंचाती है। इसी प्रकार कपास में चितकबरी इल्ली आरंभ में तना छेदक के रूप में आक्रमण करती है। अब धान में गंगई कीट का प्रकोप के बारे में जानते हैं। धान में गंगई कीट का प्रकोप जो है रोपणी जो नर्सरी रहती है उसमें कल्ले जब निकलते हैं उस अवस्था में फसल की में होता है। इसमें इसकी जो इल्ली रहती है वो तने में प्रवेश कर वहीं पर खाती रहती है और जहाँ से कल्ले निकलते हैं और वहाँ पर एक चांदी के रंग जैसा पौधा बन जाता है। इससे प्रकोपित पौधा गुच्छेदार हो जाता है और उसमें बाली नहीं बनती। इल्ली एक तरल पदार्थ उत्सर्जित करती है जिसके कारण जगह जगह फफोले जैसे आपको नजर आएंगे, किसान भाइयों गाल जैसे नजर आएंगे। इसी प्रकार तना मक्खी की विभिन्न जातियां हैं जो ज्वार सोयाबीन की फसल को क्षति पहुंचाती हैं। ये ज्वार जब 4-5 सप्ताह तक की फसल पर तना मक्खी का आक्रमण होता है, इल्ली इसमें क्या होता है तने में प्रवेश कर जो इल्ली को खा उसको तने को खाती है जिससे तना सूख जाता है। उसमें एक डेड हर्ट जैसी नामक संरचना बन जाती है। डेड हर्ट मतलब एक सूखा भाग आपको पौधे में दिखाई देगा और आगे जो पौधे होंगे उसमें बगल से शाखाएं निकलेंगी और इन पर भी प्रकोप होता है। और इसमें क्या होगा, जो देर से बोई फसल है उस पर जो है जैसे ही पानी गिरेगा तो बोई गई फसल की अपेक्षा जो देर से बोई गई फसल है उसमें ज्यादा प्रभाव होगा। ठीक है, सोयाबीन में तना मक्खी की है टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बनाकर क्षति पहुंचाती है। इसमें इल्ली द्वारा खाया गया भाग तना चीरने पर लाल भूरा दिखाई देता है। आरंभिक अवस्था की इसकी जो आरंभिक अवस्था है पौध पर वो इसका आक्रमण होने पर पत्तियां मुरझाकर सूखने लगेंगी। बड़े पौधों पर क्या होगा, इसका प्रकोप तना चीरने पर ही ज्ञात होगा। किसान भाइयों के यहाँ समझने वाली ये बात है कि इसका जो आक्रमण आरंभिक अवस्था में है वो पत्तियां मुरझा गई, मतलब इनका आक्रमण जो है इल्लियों का शुरू हो गया है तना मक्खी का। लेकिन बड़े पौधों पर इसका प्रकोप कब दिखाई देगा, जब इसको तना चीरेंगे उसमें आपको इल्ली मिलेगी तभी ज्ञात होगा। एक अन्य भेदक कीट चक्रभंग नाम का सोयाबीन में आता है, उसका काफी अधिक प्रकोप होता है। चूंकि खंडवा में सोयाबीन की फसल ज्यादा होती है, किसान भाई इस कीट को भी समझें। इस कीट की मादा जो है अपने मुखांग से जो उसका मुख्य तना रहता है जो और टहनियां और पत्तियों की डंठल पर दो समानांतर चक्र बनाती हैं, गोलाकार चक्र बनाकर अंडे देती हैं। इसीलिए इसे चक्रभंग के नाम से जाना जाता है।

गार्डल बीटल भी कहते हैं इसको। इसकी इल्ली क्या करती है, तने को खोखला कर उसे क्षति पहुंचाती है। ऐसे पौधों पर फलियां भी कमाएंगी, फलियां जब कमाएंगी तो दाने भी कमाएंगे, और दाने कमाएंगे और उसमें दाने छोटे आकार के रह जाएंगे, जिससे बाजार मूल्य है वो कम प्राप्त होगा। इन बेधक कीटों के नियंत्रण के लिए किसान भाई इमिडाक्लोपिड नाम की एक दवाई आती है 17.8 SL के नाम से। उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी एक दवाई है एसीटामिप्रिड, 20 SP के नाम से आती है। उसकी 1 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और दवाई है थायोमेथोक्सॉम नाम की एक दवाई है, 25 WG के नाम से आती है। उसकी 1 ग्राम प्रति लीटर छिड़काव किया जा सकता है। धान के फसल को गंगे कीट से बचाने के लिए पौधों को क्लोरपाइरीफॉस नाम की दवाई आती है। इसका 0.02% घोल बनाकर 12 घंटे जो पौध है किसकी, धान की, उसको रोपाई करने से पूर्व 12 घंटे डुबो कर रखें, उसके तत्पश्चात रोपाई करें, तो ये कम खर्चीला भी होगा और लाभप्रद भी रहेगा और कीट व्याधि का प्रकोप कम होगा इससे। इसके अलावा फसल सुरक्षा हेतु आप फोरेट है, फोरेट नाम की एक दवाई है, कार्बोफ्यूरो नाम की दवाई है, दानेदार दवा आती है। इससे कि 10 से 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर खेत में जब पानी भरा हो तो उसमें मिला दें तो उसमें घुल जाएगी और जो है उसका दवाई का समान प्रभाव दिखाई देगा। ज्वार की फसल रहती है उसमें तना छेदक की बचने हैं कि 40 से 45 दिन की फसल में क्विनोलफॉस या एंडोसल्फान की धूल आती है। उसको 10 किलोग्राम मात्रा को 1 हेक्टेयर में पौधे के बीच की, पौधे की पोंगली होती है, पौधे का जो डंठल रहता है, पौधे का जो ऊपरी तना रहता है, पोंगली में डाल दें, जिससे क्या होगा वो कीट तक पहुंच जाएगी, इससे कीट खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, नियंत्रित होंगे। ज्वार सोयाबीन में तना मक्खी एवं सोयाबीन में जो चक्रभंग रहता है, चक्रभंग में से फसल सुरक्षा हेतु फोरेट 10 किलोग्राम या कार्बोफ्यूरॉन 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर बुआई के समय बीज के नीचे नालियों में उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे तना मक्खी और चक्रभंग कीट जो सोयाबीन में लगते हैं उससे बचाव होगा। अन्य कीटों की बात करें तो धान एवं कपास की फसलों पर सर्वाधिक चूसक कीट का प्रकोप होता है। इन कीटों की शिशु एवं वयस्क दोनों अवस्था नुकसान पहुंचाती है। शिशु मतलब छोटे कीट, वयस्क मतलब बड़े कीट। और एक और कीट होते हैं इसमें जो है सफेद पृष्ठ पौध पद का, मतलब उसमें जो उसके जो कीट आप ऊपर से देखेंगे उसमें एक सफेद रंग का उसका पीठ दिखाई देगी उसकी, उसको फुदका बोलते हैं। एक भूरा फुदका होता है, एक सफेद पीठ वाला फुदका होगा, एक भूरा फुदका नाम का कीट आता है, धान में लगता है। और एक हरा मच्छर धान की फसल में पानी की सतह के समीप, मतलब पानी के सतह पर आपको दिखाई देगा। उसमें क्या होता है, तना, ये कीट जो रहते हैं तना पत्तियों अन्य पौधों की भागों से रस चूसते हैं। एक और धान में कीट आता है गंधी बग जिसे कहते हैं, गंधी मृतकुण की, क्या होता है शरीर से तीखी गंध निकलती है, इसके द्वारा इस कीट की पहचान होती है। ये कीट क्या करते हैं, गंधी बग, ये धानों में जब दूध भरने की अवस्था जब आती है धान में, तब दानों से रस चूसते हैं। इससे क्या होता है, इससे दाने सिकुड़ जाते हैं, अविकसित रह जाते हैं एवं बालियां सूख जाती हैं, तो उत्पादन कम होगा। अब बात करें ज्वार बाजरा मक्का में माहू कीट जो आता है वो, उसमें भी शिशु रहते हैं छोटे कीट मतलब, और वयस्क मतलब बड़े कीट। इसमें क्या होता है, पत्तियों के नीचे रहकर शाखाओं के ऊपरी हिस्से से रस चूसते हैं। और मक्के पर क्या प्रभाव रहता है माहू कीट, मक्के की माजर पर इनका अधिक प्रकोप, विकसित जो नहीं हो पाते, भुट्टे में दाने नहीं भर पाते, भुट्टे विकसित नहीं हो पाते, माजर पर इनका प्रकोप अधिक होता है। अरहर में रस चूसक मृतकण है, हरी मुलायम पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे फलियां सिकुड़कर अपरिपक्व रह जाती हैं, दाने नहीं भर पाते, दाने छोटे रह जाते हैं। इसी तरह से माहू जो है फुदका, तेला और सफेद मक्की, उड़द, मूंग, लोयाबीन, लोबिया, सोयाबीन, कपास फसलों पर विभिन्न पौध भागों से रस चूसकर क्षति पहुंचाते हैं। तेला नाम का एक कीट रहता है, वो पत्तियों की निचली सतह से हरे पदार्थ को खुरज कर खाता है। और एक तरह से कपास में भी कीट, एक रेड कॉटन बग, लाल मृतकुण समूह में, ये क्या कीट एक व्यक्तिगत रूप से नहीं समूह में आता है, पत्तियों और जो डेंडू होते हैं उससे रस चूसते हैं। और जो प्रकोपित डेंडू रहते हैं

0: जो प्रभावित डेंगू रहते हैं वो छोटे रह जाएंगे घंटे और समय से पूर्व खुल जाएंगे। जब समय से पूर्व खुल जाएंगे तो आक्रमित घंटों में रुई के रेशे कमजोर पड़ जाएंगे और रुई के रेशे कमजोर पड़ते ही रुई भदरंगी हो जाती है। इस तरह से मूंगफली में भी बात करें माहू का प्रकोप, तो चूसा कीट का आक्रमण पत्तियों के पीली पड़ जाती है, पीली पड़ने से पता लग जाएगा माहू का प्रकोप है। कपास में भी घेंटों की जो रुई के गुण प्रभावित होते हैं, परिपक्वता है, माहू कीट मीठा पदार्थ छोड़ती है, इससे क्या होता है फफूंद लग जाती है, पौधों में एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की वो प्रभावित हो जाती है। इससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होने से क्या होता है कि पौधों की वृद्धि विकास प्रभावित होता है, परिणाम स्वरूप उत्पादन भी कम होगा, इसलिए ये कीट इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इन इन रस चूसा कीटों से किसान भाई फसल की सुरक्षा हेतु इमिडाक्लोपिड नाम की दवाई, जैसा मैंने पूर्व में बताया, 17.8 SL 2 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा एक और दवाई है एसीटामिप्रेट, 20 SP नाम से आती है, 1 ग्राम प्रति 5 लीटर में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा थायमेथोक्जाम की दवाई आती है 25 WG, उसकी भी 1 ग्राम प्रति लीटर छिड़काव किया जा सकता है। पत्ती एवं फली खाने वाले जो कीड़े हैं उनके बारे में बात करेंगे। खरीफ फसलों में इन कीटों द्वारा महत्वपूर्ण क्षति होती है। धान पर फौजी कीट जो पत्ती वचक कीट में आते हैं, इसके पर कीट भी आते हैं, वो कल्ले वाली अवस्था जब रोपड़ी के समय जब कल्ले निकलते हैं तब ये कीट आक्रमण करते हैं। फौजी कीट की जो इल्ली रहती है वो समूह में पत्तियों को खाती है, हिस्पाकी इल्ली भी नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, हिस्पाकी इल्ली पत्तियों में किस तरह से पता लगाएंगे, सुरंग बनाकर हरे पदार्थ को खाएगी। जैसे सुरंग बनी हुई है पौधों में तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हिस्पा है, और टिड्डा जो रहता है ग्रास ऊपर जो वो उसके शिशु और वयस्क पत्तियों को किनारे से काट कर क्षति पहुंचाते हैं। मतलब अगर पत्ती धान की किनारे से कटी हुई है तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि टिड्डा फसल का आक्रमण हुआ है। इसके अतिरिक्त बंकी की एक इल्ली रहती है, वो किनारों से मुड़कर नालिका बना लेती है, नालिका बनाकर हरे पदार्थ को खाती है। 25 EC उसकी 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें। अब बात करेंगे मूंगफली की असंचित फसल में दीमक एवं सफेद लट जो ग्रब रहता है उसकी आक्रमण काफी अधिक रहता है। ये कीट पौधों की जड़ों को भूमि की सतह से खा जाता है, मतलब जैसी जड़ है सतही जगह से भूमिगत भागों को खाता है जिससे पौधे सूख जाते हैं, जड़ को काट देता है। ये दीमक जो रहता है फलियों को भी क्षति पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई दीमक के नियंत्रण के लिए क्या करें, क्लोरपाइरीफॉस 20 EC मात्रा की 1.25 लीटर मतलब 1.25 लीटर मात्रा को 1 हेक्टेयर की दर से सिंचाई जल के साथ उपयोग करें। अथवा किसान भाई इसकी 5 लीटर मात्रा को 5 लीटर पानी में इसकी ऊपरी उपरोक्त मात्रा मतलब 1.25 लीटर या 1.25 लीटर जो दवाई बताई क्लोरपाइरीफॉस उसको 5 लीटर पानी में घोलकर 50 किलोग्राम बालू जो रेत रहती है उसमें मिलाकर छिड़काव करने से निश्चित रूप से नियंत्रण प्राप्त होगा। खरीफ मौसम में क्या होता है किसान भाई, फसल अवस्था के अनुसार 500 से 1000 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर तरल कीटनाशक के लिए छिड़काव के लिए लगता है। तो कीटनाशक दवाओं का उपयोग सदैव निर्देशित मात्रा में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपना ग्लव्स वगैरह, मुंह पर मास्क वगैरह और हवा की विपरीत दिशा में कभी भी कीटनाशक का छिड़काव नहीं करें। इसके साथ ही समय कीट प्रबंधन में जो कर्षण क्रियाएं हैं, यांत्रिक क्रियाएं हैं और जैविक नियंत्रण उपायों का भी यथाउचित समावेश करना अत्यंत लाभकारी है। आशा करते हैं इसी जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। राम राम किसान भाई।
1: भाई बहनों, कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बाद जानकारी आपको बता दें। कल 6:30 पर प्रातः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेड रोड कलकत्ता पश्चिम बंगाल में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये हमारे केंद्र से अनुप्रसारित होगा दिल्ली से। प्रायोजित कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण कार्यक्रम समाप्ति तक यह हमारे केंद्र से सुबह 7:30 से भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। सुबह 11:40 पर भोपाल केंद्र से हमारे केंद्र से जो अनुप्रसारित

कार्यक्रम किया जाए, उसका नाम है प्रायोजित कार्यक्रम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री और भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो ये कुछ कार्यक्रम जो हमारे केंद्र से अनुप्रसित किए जाने वाले, उसकी जानकारी। अब हम आपको बता दें कि आज हमारे मौसम मंडी भाव की जानकारी के बारे में, आज सूर्य उदय 5:28 पर हुआ और सूर्यास्त 6:52 पर हुआ। आज दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और आप बता दें आपको, आज हमारी कृषि उपज मंडी समिति खंडवा से प्राप्त कृषि जिन्सों के भाव की जानकारी के बारे में, सोयाबीन 4,600 रुपया और अधिकतम 7,400 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं का न्यूनतम भाव रहा है 2,340 रुपया प्रति क्विंटल और अधिकतम 2,491 रुपया प्रति क्विंटल, चना 4,800 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 5,700 रुपया प्रति क्विंटल का भाव रहा, तुअर 4,700 रुपया न्यूनतम भाव और 5,501 रुपया अधिकतम प्रति क्विंटल का रहा, मक्का 1,751 रुपया प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,900 रुपया प्रति क्विंटल का रहा, मूंग 6,200 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम 7,400 रुपया प्रति क्विंटल का भाव रहा। ये था हमारा कृषि उपज मंडी भाव की जानकारी। और हम बता दें हम आज का कृषि समाचार के बारे में, कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल का माध्यम से जिला का पात्र किसान भाई नखा कृषि यंत्र पर सब्सिडी दी जाए। अब पोर्टल पर आवेदन करता समय भूमि संबंधी जानकारी का सत्यापन करें एग्री स्टेक की फार्मर आईडी होना अनिवार्य कर दिया गया है। फार्मर आईडी का बिना किसान पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सकेगा। ये था आज का कृषि समाचार। और अब हम सुनी ले एक निमाड़ी लोकगीत जैसे गायज कांता जोशीना।

भाई बहनों ने अभी सुन रहा था कांता जोशी को गाया निमाड़ी लोकगीत। अब हम आपको बता दें हूँ कार्यक्रम में प्रश्न का उत्तर के बारे में। सोयाबीन की उन्नत किस्म ना कौन सी है? तो एक ही उन्नत किस्म है JS 335, JS 2212, JS 2216, JS 2172, JS 9560 और JS 2034 और 2029 और NRC 132 है। ये इनकी उन्नत जाति है भाई बहनों ने।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: भाई बहनों ने एक साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम को समय भी समाप्त होने जा रहे, तो दियो आज्ञा, आपका भाई ओम प्रकाश चौरे का राम राम।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भारत को, उसमें उन्होंने 4 जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये 4 वर्ग है, इनको सशक्त करके ऐसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
3: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है। सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिला

0: का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
1: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, समृद्ध मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना।

0: और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
1: जी।
0: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ। अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
1: जी।
0: तो इस तरह की जो योजना, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही हैं, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों पर, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, केजी टू पीजी जो है कि आप केजी से लेकर पीजी तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी। और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण, आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलते। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं जैसे कि, तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
2: बहुत इंपॉर्टेंट ये सशक्तिकरण का
0: ये बहुत सुरक्षा की भावना, वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया, ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
1: बिल्कुल,
0: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि एनडीए खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिजेंट में लेडी नहीं लीड करते,
2: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता।
0: अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया है। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती हैं, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं एलपीजी, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
2: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलुओं को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं?
3: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
2: जी।
3: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
2: जी।
3: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के

0: किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर एमबीबीएस के देख लें तो 55-56 हजार की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56 हजार एमबीबीएस आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32 हजार के आसपास थी, वो लगभग 65-70 हजार हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई है। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई है। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सीटें जो है एमबीबीएस की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई है, वो डबल हो गई है, ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
0: खेलो इंडिया, वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उनपे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लाइक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं भी, सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो आईटीआई हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है आईटीआई करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आईटीआई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था, अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं। तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको बीए करना है, फिर 2 साल पीजी करना है, फिर एमफिल करना है, ये करना है, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर

0: युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो, 2 साल पढ़ा हो, वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो क्या होता है मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: नहीं। सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वह बड़ी बड़ी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो, तो वो एक अवसर। और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप
0: इंडिया द्वारा कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री, जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है, लाखों यूथ जो हैं वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं, और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम top 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है, लगभग मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती, या और किसान अधिकांश जो राज्य है उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है। और आपके खाद्यान्न

0: कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष,
0: तीन इंस्टॉलमेंट में 2,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं
1: जी।
0: वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है क्योंकि उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वही बन रही हैं। जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है। और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है। जो मतलब जो सीधी से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान ले कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं। जो 55-60 करोड़ लोग हैं, वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है। और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं। कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जो इन्हें मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्म सम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, अभी वनवास जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि इतने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों

0: को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन
1: हाँ
0: पत्तों को हम नीलू जी या आप जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी। तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया है, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ,
0: हाँ,
1: उन्होंने सम्मान
0: मिलन
1: दिलाया
0: श्री
1: है पूरे।
0: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न। और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए। तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए।
1: जी
0: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके
1: बेंचमार्क
0: खरीद
1: सेट
0: ले,
1: हो जाता है।
0: नहीं खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे 4 कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी। पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता।
1: बिल्कुल
0: सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कम वेज पे बिल्कुल काम नहीं करवाओगे।
1: जी
0: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रही है, तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है, कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी
1: हाँ।
0: 1 रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को। तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
0: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें, तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के, समझ के, जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में
1: आत्मनिर्भर
0: जनधन खाते खोले गए,
1: जी,
0: डायरेक्ट
1: जहां
0: बेनिफिट
1: जरूरत
0: उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया, उन
1: और एक तरह से जो
0: मशरूम
1: हमारी
0: पर कर
1: ट्रेडिशन
0: लिया,
1: है हमारे
0: जो
1: देश की,
0: हम,
1: वो
0: हाँ
1: भी अलाइव
0: मतलब
1: रहती
0: कि
1: है।
0: हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था, उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें हैं जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं। जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण। दूसरा, मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ
1: और
0: चलो
1: एक्चुअली
0: मिलती।
1: वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही
0: हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है। और भी जो
0: और जैसे
1: मोर्टैलिटी रेट
0: जो
1: है,
0: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर

0: हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
0: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी, जी.
0: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक बीपीएल जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेश मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे,
2: 25 करोड़
0: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है,
0: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहा है वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी
0: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी फार्मर्स हैं, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
3: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहां मैं भी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था, जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था, वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, से इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500 ग्राम के 1 किलो के छोटे पैकेजिंग बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट,
3: अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इनको हमारे डेवलपमेंट जो, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए। अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहे, जहां है जैसे जी रहे हैं रहे, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
3: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
1: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशन है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
3: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो होगा छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं, तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों में छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक हैं, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे, यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: सर्जना जी आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
0: देखिए मुझे जो सबसे अच्छा 2-3 चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
1: जी,
0: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले, ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे, तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो ये सोच बहुत अच्छी है।

0: अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है, 99 तो हो ही चुकी, हो गई, शायद 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है।
0: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन, कौन
2: ये आवाज है अलका याग्निक की, फिल्म का नाम है हमराज, गीतकार है सुधाकर शर्मा और संगीतकार हिमेश रेशमिया।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार

0: सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा।
1: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो करने

0: से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
3: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है त्रिशूल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार हयाम।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था त्रिशूल। कार्यक्रम का अगला गीत नौशाद साहब का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ और ये फिल्म है साथी।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था साथी। इसी आवाज को सुनिए, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: Spotlight.
1: This is Akashvani. In the program Spotlight, on the eve of International Yoga Day, we bring you an exclusive interview with Pratap Rao Jadhav, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
2: हर साल की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आखिर क्या है योग? ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचार और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जादव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
3: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जिसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा, और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखी है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
2: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
3: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थान हैं, हमारे भी आयुष की भी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था,

0: लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, तो वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और 2014 से लेकर आज 2026 तक ये 12 साल में योगा क्या हो, आयुर्वेदा हो, सभी के आयुष के ऊपर बहुत सारे हमने रिसर्च भी बढ़ाए, एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाए कि हमारे प्रमाण है और ये बात सही है और उसमें है भी। तो वैसे योगा के भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अपन गए थे बेंगलोर में, चलो हम आयुष मंत्रालय भी हमको, हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सभी के ऊपर रिसर्च के वजह से ये लोगों को प्रमाण आ गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टेबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठकर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए, और हमारे इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है, और दूसरा ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री की भी ये सोच रहती कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
1: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में, और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कैलकटा में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
0: इस बार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है। जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है, हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमोट नहीं किया, लेकिन ये साल वहाँ की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी विचार सरने वाली एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार वहाँ पर चुन के दिए, और वो वहाँ के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहाँ पर सीखे। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही कि जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है, तो वो 100 दिन में पूरे भारतवर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहाँ के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। तो उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था भरत मंडपम में, दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोनार शहर में हुआ था जहाँ पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है, उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस बहुत अच्छी ढंग से वहां पर किया। सिर्फ वहां पर हमने योग महोत्सव नहीं किया, तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहां पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया, हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा, लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहां पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया, और अभी मेन इवेंट ये कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी, और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था, लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहाँ थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड एक अच्छी जगह है कि वहाँ बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहाँ पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा, और वहाँ के कारपोरेशन और वहाँ के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहाँ तो रोड पर करेंगे लेकिन कलकत्ता

0: के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे। हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहां पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाएत करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है। हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1 लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहां पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने अभी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
0: ये योग पार्क का जो पोर्टल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो, कि हर जगह में हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे। लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते हैं। देखो, ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि लोगों को ऐसा एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, बस 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई। हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े वैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां हैं, कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि भी CSR फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए, तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका, कारपोरेशन, नगर पंचायत है, इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेगी, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे की लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर योग करें।
1: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
0: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की, और लोग भी ये समझने लगे कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देके ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,46,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड आया तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहाँ पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहाँ पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति। अब बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, हम बुजुर्गों की भी है। नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हुए। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लिवर हो, पैनक्रिया हो, सभी के लिए अलग अलग तक। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर एयर ट्रेवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है, तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से

0: क्या है, अनुभव क्या है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है। इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारे देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा। कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है। अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया। तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होंगी, योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है, तो लोग भी अभी जगह जगह पे, जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गाँव में हमारे भी, तो वहां पर लोग फीस दे के एक घंटा योगा सीखने जाते हैं या करने जाते हैं कि भाई हम अकेले में घर में नहीं कर सकते तो फिर वहां जाओ, तो ये रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जादव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
2: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे, यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Interviewer was Deeksha Saxena, Akashwani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
3: Spotlight.
4: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अनमोल यादें।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बसु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

जाहिर है कि अब बासु भट्टाचार्य का फिल्म करियर धीरे धीरे अपनी दिशा ले रहा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया, जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे। आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का, यानी इस फिल्म त्रयी का

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रची और इसका संगीत कनू रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका ये विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू रॉय।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही, हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए गृह

0: अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।
1: वो

0: वासु भट्टाचार्य की फिल्में अपनी कहानी, अपनी जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। वासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में वासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच, आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना फायदेमंद हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत खुश हैं आजकल बच्चे, जैसे पहली बार उन्हें ममता मिली हो।
0: सन 1997 वासु भट्टाचार्य ने अपनी आखिरी फिल्म बनाई आस्था। मुख्य सितारे थे रेखा, ओमपुरी और दिनेश ठाकुर।

20 जून 1997 को इस असार संसार को छोड़कर एक लंबी यात्रा पर चले गए बासु भट्टाचार्य। बासुदा इस दुनिया से विदा हो गए, पर रह गया उनका सिनेमा, उनका वो सिनेमा जो मानवीय संबंधों की पड़ताल करता है। ये वो सिनेमा है जो अपनी तरह से निराला है और इसीलिए लोग इन फिल्मों को खोज खोज कर देखते हैं और एक फिल्मकार के रूप में बासु भट्टाचार्य को याद करते हैं। वैसे

बासु भट्टाचार्य का सबसे बड़ा योगदान कुछ फिल्म समीक्षक तीसरी कसम को मानते हैं। तो अब आपसे विदा लेने से पहले तीसरी कसम में कही गई ये सीख।

0: बस जाना है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। हवा के साथ नींद करवटें बदलती है, आंखों आंखों में बात करती है, जर्द पत्तों के बीच ढूंढती है खुशबू वो, फूल तो सूख गए वो कहाँ समझती है, मन की दहलीज पर रखकर चराग यादों के, खत वो चुपके से अंधेरे में रोज पड़ती है। वो कोई शोक हसीना नहीं है, पर यूं ही कभी कभी उदासियों के बीच हंसती है। ये अभी कौन सा मौसम जगा गया उसको, गुलाबों इत्र की खुशबू से वो महकती है। दर्द से इश्क लड़ाने की उसको आदत है, गम के सहरा में खड़ी तितलियां पकड़ती है।

है मुलाकातों का ये मौसम, तेरी आंखों में डूब जाने का मौसम, रंगों में सिमटी हुई तू जब आती है मेरे सामने, तो कायनात में बिखर जाता है बहारों का मौसम। और जब दिल की वीरानियां तेरे ख्यालों से गुलजार होती हैं, तो बहुत भाता है तेरी यादों का मौसम। मेरे इश्क के तमाम रंगों को ओढ़कर जब तू आती है सामने, तो मेरी नजर का ख्वाब बन जाता है तेरी खूबसूरती का मौसम।

स्याह रातों में, दिन के उजालों में एक तेरा चेहरा ही नजर आता है सभी नजारों में। हर तरफ यही अफसाने हैं कि हम तेरी अदाओं के दीवाने हैं। कभी काली घटा को ओढ़कर दिन में तू निकलती है, तो कभी झिल मिलाती हुई शब में तू चांदनी सी बिखरती है। वो तेरे पैरहन के अंदाज, वो तेरे हुस्न के जलवे, तेरे कदमों पर सिर झुकाकर चांद भी करता है तेरे सजदे। बेनूर सी है मेरी जिंदगी तेरे बिना, करता हूँ मोहब्बत तुझसे मैं बेपनाह।

अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है छाया गीत में। कुछ कहानियां अधूरी सी, चंद मुलाकातें पूरी सी, बड़े हसीन दिन थे वो, खूबसूरत सी थी वो रातें, हाथों में हाथ डाले करते थे हम जब ढेर सारी बातें, चांद का नूर तुम्हारी आंखों में झलकता था, काली घटाएं लहराती थी जुल्फों में, ढलते ढलते शाम कुछ यूं तुमसे लिपट जाती थी, जैसे रात के आगोश में कोई कली सी खिल जाती थी।

अदाएं भी हैं तुझ में, है अंदाज भी सबसे जुदा। हुस्न की मूरत है तू, तू ही है मेरा जहां। कभी बेमौसम बरसात सी तू मेरे वजूद को भिगो जाती है, कभी अनकही किसी बात सी तू मुझे मदहोश कर जाती है। खामोशी की भी जुबां होती है, ये सुना था मैंने, तेरी आंखों को पढ़ा जब, इस बात को माना मैंने। तेरे होने से ही है फूलों में खुशबू, तेरे होने से ही है हवा में जादू। तू है जैसे एक हसीन गजल या फिर कोई एक महकता सा कंवल।

एक सुबह हो तुम धुली धुली, एक शाम हो तुम मदहोश सी, एक कतरा हो तुम शबनम का, एक सितारा हो कहकशा के दामन का, एक मुकम्मल हुस्न तुम्हारा परंपरा में सिमटा हुआ सा, कुछ कुछ हया की चांदनी में लिपटा हुआ सा, दिल लुभा रही है तुम्हारी हर एक अदा, इश्क को जैसे दे रही हो सदा, फूलों की खुशबू हो तुम या कोई फूल ही है मेरे रूबरू, चांद की किरण कहूँ या चांद हो तुम हूबहू।

0: अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: यह है विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
3: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
3: यह मोर आंतरिक कामना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
5: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः

परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।